कर असुर संहारा सुयश कुमार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर दीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्ण प्रतिज्ञा कसु पुरारी दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत

त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी आय

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजियो पनि पसंदीदा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: पर
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम को तैयार किया है सामुदायिक रेडियो गुड़गांव की आवाज ने। वार्ताकार है आरती। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता आप सबकी अच्छी सेहत और सही जानकारी के लिए हमेशा प्रयासरत है।
1: नमस्कार, विश्व टीकाकरण सप्ताह के उपलक्ष्य में हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर लहरिया एक चिकित्सक, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और लेखक हैं। डॉक्टर लहरिया ने टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाने में भारत के COVID-19 प्रतिक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यही नहीं बल्कि वह प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को ड्राफ्ट करने में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। चलिए सुनते हैं डॉक्टर लहरिया के साथ यह वार्तालाप।
2: डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, भारत में टीकाकरण कवरेज में सुधार के प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां हैं। सामुदायिक स्तर पर मुख्य बाधाएं क्या है जो हमें सभी के लिए पूर्ण टीकाकरण में सफलता प्राप्त करने से रोकती है?
3: इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्ष 1978 में शुरू हुआ था, जब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से इसको शुरू किया गया था। तो तब कुछ कम वैक्सीन होती थी और साथ में फोकस था कि शहरी बच्चों को टीकाकरण होगा। फिर जब 1985 में इसको एक नया नाम दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो उसका तात्पर्य यह था कि अब यह शहरी से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह यूनिवर्सल हो इम्यूनाइजेशन होगा। लेकिन उसके बाद के 30 सालों में भी इम्यूनाइजेशन कवरेज काफी कम रहा, खासतौर से 2005 तक सिर्फ आधे बच्चे जो हर साल पैदा होते हैं उनको ही सारी रिकमेंडेड वैक्सीन मिल पाई थी। तो उसकी कई वजहें थी, एक तो वैक्सीन की सप्लाई बड़ा चैलेंज होता था, दूसरा क्योंकि हमारा देश बड़ा है, करीब 6.5 लाख गांव पूरे देश में है, तो हर गांव तक हर नए बच्चे तक समय पर टीकाकरण पहुंचाना बड़ा अपने आप में एक चुनौती है। फिर एक बात आती है कि जो टीकाकरण की प्रक्रिया होती है वो सप्लाई और डिमांड दोनों पर निर्भर करती है। अब इसको समझते हैं। सप्लाई का मतलब हुआ कि टीकाकरण को हर बच्चे और हर गांव देहात तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि वहां पर टीकाकरण की सर्विसेज पहुंचे, अर्थात जो सरकारी सिस्टम है, जो टीके लगाता है, जो ANM होती है, वैक्सीनेशन करती है, वैक्सीन लेके उन लोगों तक पहुंचे, तो सप्लाई वहां तक हो। दूसरा, अगर कोई ANM या जो टीकाकरण के वैक्सीनेटर्स होते हैं उस गांव या कस्बे में पहुंच भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली इम्यूनाइजेशन कवरेज हाई होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह वॉलंटरी है, तो लोगों का आना भी जरूरी है, अर्थात डिमांड भी होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को या कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अपने बच्चों को टीके लगवाने हैं और समय रहते लगवाने हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड का चैलेंज है। उसके अलावा यह भी देखा गया है और जिसको आजकल काफी जोर शोर से जिस पर बात हो रही है उसको कहते हैं जीरो डोज चिल्ड्रन, अर्थात अभी भी हमारे देश में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीकों की पहली इवन ए सिंगल शॉट भी नहीं लगा होता है। अब ये बड़ी चुनौती है क्योंकि अगर पूरी तरह टीकाकरण करने के लिए 6 कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे को एक बार भी टीकाकरण नहीं लगा है तो हमें उसी गहराई में समझने की जरूरत है। तो हालांकि पिछले 20 सालों में देश में टीकाकरण के कवरेज में और जो वैक्सीन की संख्या है उनमें इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी जो टीकों का कवरेज है हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश या श्रीलंका या थाईलैंड है उनसे कम है। उन देशों में हर साल 95% से अधिक बच्चे लगभग सारे रिकमेंडेड वैक्सीन मिलते हैं, अभी भी हमारे देश में वो 80% करीब रहा हुआ है और राज्यों में इनइक्विटी है, अर्थात केरल में अगर केरल या तमिलनाडु कर्नाटक में अधिक प्रोपोर्शनेट बच्चों को टीके लगते हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी भी काफी सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो इस सप्लाई और डिमांड साइड दोनों की चुनौतियां हैं।
2: टीकाकरण की मांग में कमी क्यों है? क्या ये किसी विशेष समुदाय या जनसंख्या में समस्या ज्यादा दिखती है?
3: सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि हमारे जैसे विशाल देश में जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे गांव देहात शहर कस्बे जिले हैं, वहां पर सभी जगह सेम कारण नहीं होता, तो कुछ तो हमें उस पर और हर राज्य को, खासतौर से राज्यों को इस पर देखना होगा कि उनके राज्य में कौन सी पॉपुलेशन है जो छूट रही है और उस पॉपुलेशन में कारण क्या है। अब बात करते हैं जैसे कि माइग्रेंट पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती है कि जब लोग काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य एक जिले बल्कि विद इन डिस्ट्रिक्ट में भी एक गांव से शहर आ जाते हैं तो शहर में वो उनका लिस्टिंग नहीं होता है तो उनको नहीं पता होता। जो लोग आते हैं वो उनको कहाँ टीकाकरण होता है ये पता नहीं होता है और जो सप्लाई सिस्टम है या जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको पता नहीं होता कि कहाँ पर बच्चे आए तो उस तरह से छूट जाते हैं। तो माइग्रेंट पॉपुलेशन की एक चुनौती है। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे कि कुछ राज्य हैं जिनके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि वहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन होता है, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं बच्चों को साथ में लेके आते हैं तो उनके पास टीकाकरण का रिकॉर्ड नहीं होता। तो जहां पर नई जगह पर अगर वैक्सीनेशन करना भी चाहें तो माता पिता को पता नहीं होता है कि कौन सा टीका लगाए और टीकाकरण का रिकॉर्ड होता नहीं है। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है उनके पास होता नहीं है तो वो सिस्टम भी नहीं समझ पाता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो एक माइग्रेंट का है। दूसरा कई सारी सब कम्युनिटीज होती हैं जहां पर वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट होती है, हेजिटेंसी होती है कि उनको लगता है वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बीमारियां कम हो गई हैं, टीकों की वजह से बीमारियों का असर कम हो गया तो उन्हें लगता है कि बीमारी इतनी है ही नहीं तो इसके टीके क्यों लगाए जा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि टीके लोगों को लगाए गए या अधिकतर लोग टीके लगवा रहे हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि रिमोट हिली एरिया हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई तो उन पर उनमें समय रहते टीकाकरण नहीं हो पाता है और टीकाकरण सर्विसेज भी नहीं पहुंचती हैं तो ये सारी चुनौतियां हैं। फिर बात आती है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो लेस देन सफिशियंट फंक्शनिंग है कि उसकी फंक्शनिंग इतनी अधिक नहीं होती। तो कहने को ऑन पेपर टीकाकरण हो रहा होता है लेकिन वास्तविकता में वहां तक सब लोग नहीं पहुंच रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखते हर परिस्थिति में अलग अलग कारण होते हैं और हमें उन कारणों को याद रखते हुए उस पर लोकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है।
2: इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए वरना एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो सकती है?
3: मुझे नहीं लगता कि हमें उस नजर से देखना चाहिए। वैक्सीन डेवलपमेंट की एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है और निश्चित रूप से वैक्सीन एक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होते हैं लेकिन अगर वैक्सीन नहीं तो कोई और टूल आएगा। लेकिन हम किसी चीज को इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसे कि सारी दुनिया में लंबे समय से टीबी के लिए एक मोर इफेक्टिव वैक्सीन की खोज चल रही है लेकिन वो सफलता नहीं मिली है। उसी तरह HIV के अगेंस्ट वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार चल रहा है लेकिन अब तक वो वैक्सीन नहीं बन पाई है। फिर बात करते हैं डेंगू के खिलाफ भी, डेंगू जो एक कॉमन इलनेस है, डेंगू बोलते हैं, उसके लिए भी वैक्सीन इतनी एक वैक्सीन फिलहाल आई है लेकिन वो भारत में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसके और अधिक एग्जामिनेशन की जरूरत है, वो कुछ सर्टेन परिस्थितियों में दी जा सकती है। तो वैक्सीन जो आएंगी भविष्य में हम उन पर टू मच रिलायंस नहीं कर सकते हैं लेकिन जो बन चुकी हैं सेफ एंड इफेक्टिव हैं उनके बेहतर यूटिलाइजेशन एक अप्रोच होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि आज के समय में जिन जो वैक्सीन हैं आने वाले समय में उससे अधिक वैक्सीन होंगे और समय के साथ उनकी एपिडेमियोलॉजी चेंज हो जाती है वैक्सीन की वजह से तो उसके चलते फिर हो सकता है कुछ पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगानी पड़े। जैसे COVID-19 की वैक्सीन आज से 2-3 साल पहले नहायत जरूरी थी लेकिन अब कोई COVID-19 वैक्सीन की बात नहीं कर रहा है। तो उसी समय के साथ अगर हम कुछ बीमारियों पर काबू कर लें तो उन वैक्सीन की जरूरत खत्म हो जाएगी लेकिन नई करीब 145 ऐसी बीमारियां पहचानी गई हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन अंडर द डेवलपमेंट है, अंडर रिसर्च डेवलपमेंट है।
2: ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता बट दे आर सेफ टू यूज प्राइवेट मार्केट में? कैसी कौन सी वैक्सीन है जिनको पॉपुलेशन की जरूरत है, को जरूरत है लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं या फिर मिसकंसेप्शन है जो कि गवर्नमेंट प्रमोट नहीं?
3: देखिए कई सारी वैक्सीन हैं जो बच्चों में भी लगती हैं, एडल्ट को भी लग सकती है। जैसे कि निमोकोकल वैक्सीन है बच्चों को लगाई जाती है लेकिन वो एडल्ट में भी बेनिफिशियल होती है। टाइफाइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारी एडल्ट के लिए भी होती है। फिर फ्लू वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा के लिए और खासतौर से अब इन्फ्लुएंजा मोर सिवियरिटी के साथ आता है तो उनका एनुअल वैक्सीनेशन होता है। तो ये सारी वैक्सीन अभी वेरी रिसेंटली शिंगरेक्स जिसको हर्पी जॉस्टर की वैक्सीन बोलते हैं 50 साल की अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाती है वो उपलब्ध हुई है। तो एक एंटायर रेंज ऑफ वैक्सीन है जो इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड होता है और खासतौर से जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है जैसे कि कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या लिवर किडनी की इलनेस है तो उन लोगों को इस तरह की वैक्सीन का काफी बेनिफिट होता है। तो जैसे कि जिनको भी कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, तो उन लोगों को काफी सारी वैक्सीन हैं, जिनमें निमोकोकल वैक्सीन हो गई, हिप वैक्सीन हो गई, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हर्पी जोस्टर वैक्सीन का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। सिमिलरली टाइफाइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी एडल्ट एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन को लगाई जा सकती है। लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं एक बात और कहूंगा कि हम यहाँ पर ब्रॉडर प्रिंसिपल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन इनको इंडिविजुअल अप्रोच फॉलो करनी होती है। खासतौर से अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज है तो उसमें लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन नहीं लगाई जाती है।
2: एचपीवी टीकाकरण की आदर्श आयु के बारे में काफी भ्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि लोगों को कब टीकाकरण करवाना चाहिए? इसके अतिरिक्त क्या वृद्ध महिलाओं को इस टीके से कोई लाभ हो सकता है?
3: तो एचपीवी वैक्सीन रिकमेंड की जाती है 9 साल से लेके 46-45 साल तक की फीमेल के लिए। तो यूजुअली इसका रिकमेंडेशन है कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो मोस्ट इफेक्टिव होती है वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, अगर 9 साल से 14 साल तक दे दी जाए, और अगर इस उम्र पर दी जाती है तो उसके 2 शॉट लगते हैं। 15 साल के बाद इस वैक्सीन के 3 शॉट्स की रिकमेंडेशन है, और इसमें कुछ वैक्सीन हैं जो 9 से 14 साल तक रिकमेंडेड हैं, कुछ 26 साल तक रिकमेंडेड हैं, और 45 साल तक भी यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऑफकोर्स 15 साल से 45 साल तक 3 शॉट्स की जरूरत होती है। बाकी ये वैक्सीन इतनी सेफ और इफेक्टिव है, दुनिया की करीब 120 कंट्री में इन वैक्सीन का यूज हो रहा है, और जो पद्धति है, जो टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई जाती है, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन याद रखने की बात है कि कोई भी वैक्सीन होती है, कितनी भी सेफ और इफेक्टिव हो, एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक उसका एडवर्स इवेंट हो सकता है। तो यह कहना कि वो कोई एडवर्स इवेंट नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग उसी को कोट करते हैं। लेकिन रिस्क ऑफ सच एडवर्स इवेंट इज वेरी लो। बाकी कोई भी चीज बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन लोग उस रिस्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन जो उसका बेनिफिट है। वो बेनिफिट होता है कि वैक्सीन इतनी सीरियस इलनेस को बचाती हैं। इनफैक्ट एचपीवी वैक्सीन के बारे में 6 टाइप के डिफरेंट कैंसर और कुछ अदर अदर टाइप ऑफ लीजन से भी प्रोटेक्ट करती है, सो दे आर वेरी इफेक्टिव।
2: अब हम अपने साक्षात्कार के सबसे रोमांचक और सबसे जानकारी पूर्ण भाग पर पहुंच गए हैं। मिथक या तथ्य? मैं टीकाकरण के बारे में कुछ हानिकारक गलतफहमियों के बारे में बात करूंगी। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर उनका खंडन करें। मिथक नंबर एक, रोगाणुओं के संपर्क में आने के कारण भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही मजबूत होती है, इसलिए उन्हें टीकों की आवश्यकता नहीं है।
3: आप जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की धारणाएं होती हैं कि हमें रेगुलर एक्सपोजर होता रहता है विभिन्न पैथोजन से, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमें बीमारियां नहीं होंगी, यह पूरी तरह गलत है। आइए इसको एक साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन आ जाता है, अर्थात हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन से लड़ रहा है, तो ऐसे में अगर दूसरा पैथोजन आ जाता है जो उस पर अटैक करता है हमारे शरीर पर, तो चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही बिजी है, हमारे जो फाइटर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, एक बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उसका मतलब वो दूसरी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा अगर हमें रेगुलर इन्फेक्शन होंगे, और बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें अगर सेम पैथोजन फ्यूचर में इन्फेक्शन करता है, जैसे पास्ट में इन्फेक्शन है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो उसको पहचानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी इन्फेक्शन होगा, उससे लड़ने के लिए तैयार होगा। तो ये सब गलत धारणा है। मैं दोहराना चाहूंगा कि बेहतर तरीका है कि हम अपने शरीर को किसी भी बीमारी से बचाएं, और रिपीटेड इन्फेक्शन हमें बाकी इन्फेक्शन के लिए प्रोन बनाते हैं, ना कि उनसे प्रोटेक्ट करते हैं।
2: मिथक नंबर दो, वैक्सीन केवल वैश्विक राजनीति नियंत्रण और कॉरपोरेट लालच का एक उपकरण है।
3: यह निश्चित रूप से पूरी तरह एक मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग जिस आधार पर इस आर्गुमेंट को देते हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में बनती हैं, तो उनका इंटरेस्ट होगा। लेकिन याद रखने की बात है कि वैक्सीन भले ही प्राइवेट सेक्टर में बनती हो, और कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर है, तो उसे प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो एक लॉजिकल सी बात है। लेकिन वैक्सीन लगाने का जो निर्णय होता है वो एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट लेते हैं, था ऐसे लोग निर्धारित करते हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वैक्सीन लगे या ना लगे। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मेडिकल डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि अगर इस वैक्सीन को लगाने से फायदा होगा तो ही उसका रिकमेंडेशन किया जाता है, अगर फायदा नहीं होगा तो नहीं रिकमेंड किया जाता। तो उन लोगों का जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं उनका इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट होता है कि अगर ये वैक्सीन उपलब्ध है तो जनता को कैसे पहुंचे। फिर बात इन्हीं लोग ही करते हैं जो कहते हैं कि अच्छा अरे इनका किसी प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट है, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन नहीं बनाता, वो इंडस्ट्री वैक्सीन नहीं बनाती, तो कई सारे लोगों का उसमें बीमारियों की वजह से गंभीर बीमारी हो सकती थी, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ने वैक्सीन बनाई है, कुछ लोगों का उसमें पैसा लगा है, हमें उसे शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। और अंत में एक इंटायर प्रक्रिया होती है, वैक्सीन बनाना एक प्रक्रिया है, वैक्सीन के बारे में निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, और अंत में मतलब लोगों को उसमें लगवाना लोगों का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई चिंता कि वैक्सीन सुरक्षित है, और वैक्सीन बनाने वालों का वैक्सीन लगाने के निर्णय में कोई रोल नहीं होता है।
2: मिथक तीन, रोग प्राकृतिक है, हमें उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3: यह भी एक अधूरे टेक्निकल लॉजिक पर आधारित बात है कि वैक्सीन के उस प्रक्रिया को रोकते हैं। याद रखने की बात है कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उसके दो आउटकम हो सकते हैं कि एक तो व्यक्ति को उसके बाद रिकवर हो जाएगा और उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और दूसरी आउटकम होगी कि व्यक्ति को गंभीर बीमारी होगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो बीमारी उसे ठीक होने की संभावना भी रखता है और साथ में गंभीर बीमारी की भी संभावना रखता है, तो यह इम्यूनिटी डेवलप करने का अच्छा तरीका नहीं है। जबकि अगर वैक्सीन दी जाए तो हम जानते हैं कि वैक्सीन जो गंभीर बीमारी होने की संभावना को जीरो कर देती है और निल कर देती है कि वैक्सीन लगाने पर गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन इम्यून प्रोटेक्शन अर्थात इम्यूनिटी उससे बन जाएगी। तो वैक्सीन वो सब फायदे देती है जो एक नेचुरल इन्फेक्शन दे सकता है विदाउट एनी रिस्क, जो वैक्सीन में वो रिस्क नहीं होते जो नेचुरल इन्फेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई कहता है कि हम तो नेचुरल इन्फेक्शन करेंगे और उससे प्रोटेक्शन देंगे तो ये अपने हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है। हाँ, याद रखने की बात है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें वैक्सीन नहीं है तो उनमें हमारे पास चारा नहीं है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, लेकिन कई सारी बीमारियां जिनमें हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है और गंभीर बीमारी होने पर उसका खर्चा और उसके परिवार के ऊपर उसकी जो मार है वो बहुत अधिक पड़ेगी, उससे बचने के लिए वैक्सीन ही बेहतर तरीका है। तो ये चॉइस नहीं है कि वैक्सीन कराएं या नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी डेवलप करें, तो वैक्सीनेशन इज द ओनली राइट चॉइस।
2: मिथक नंबर चार, गर्भवती महिलाओं को कभी भी कोई भी टीका नहीं लगाना चाहिए।
3: तो इसमें ऐसा है कि प्रेगनेंसी में जो भी वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए वो एक तो फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह के बाद ही दी जानी चाहिए। सारी वैक्सीन प्रेगनेंट वुमेन को नहीं दी जाती हैं, कुछ वैक्सीन जो लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली रिकमेंडेड की जाती है, जैसे टीटी की वैक्सीन, टिटनेस टॉक्साइड हो गया, और साथ में असलोपेटिसिस और डीटेप नाम की वैक्सीन भी आती हैं, इनको भी प्रेगनेंसी में दिया जाता है, इनका बेनिफिट होता है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो जब बाहर की दुनिया में आता है तो उसके बॉडी में कुछ चीज़ों के अगेंस्ट रेसिस्टेंस नहीं होता, तो उसको हम डेवलप करना कराने का तरीका है कि प्रेगनेंसी में मदर को वैक्सीन दे दीजिए, तो जो मदर में जो एंटीबॉडी बनेंगे वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में भी आ जाएंगे। तो बच्चे को कुछ वैक्सीन खासतौर से 6 वीक के बाद दी जाती है, तो जब न्यू बॉर्न बर्थ से 6 वीक तक बच्चे के पास प्रोटेक्शन का अकेला चारा होता है वो होता है कि मैटरनल एंटीबॉडी, जो जब यूटरस में था बच्चा उस समय उसमें आ गई थी, मदर के माध्यम से बच्चे में एंटीबॉडी आई वो उनको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए सारी वैक्सीन प्रेगनेंट वुमेन के लिए रिकमेंड नहीं की जाती है, लेकिन कुछ वैक्सीन है जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड होती है कि इनको मदर को लगाना ही है, जिससे मदर को प्रोटेक्शन होगा और बच्चों को भी प्रोटेक्शन होगा। फिर बात आती है कुछ लाइफ सेविंग वैक्सीन, जैसे कि अगर डॉग बाइट है, रेबीज की वैक्सीन है, तो वो इतनी लाइफ सेविंग है कि आप इरेस्पेक्टिव व्यक्ति प्रेग्नेंट है नहीं है उसको वो वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन प्रेगनेंसी में बाकी लोगों के वैक्सीनेशन से थोड़ी अलग होती है, लेकिन कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी में बहुत महत्व रखती हैं।
2: मिथक पांच, एक समय में बहुत सारी वैक्सीन लेना एक व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को अत्यधिक भारी या ओवरलोड कर सकता है।
3: ओवर वैक्सीनेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं अभी बीच में अखबारों में पढ़ रहा था कि एक आदमी ने एक ही वैक्सीन को करीब 200 बार लगवाया, तो लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड शेड्यूल है, वो यूजुअली कुछ वैक्सीन में एक शॉट होता है, कुछ में दो शॉट और थ्री शॉट होता है। ओवर वैक्सीनेशन जैसा कुछ नहीं है। हाँ, याद रखने की बात है, सिर्फ रिकमेंडेड शेड्यूल फॉलो करना है, और अगर आप रिकमेंडेड गवर्नमेंट शेड्यूल या जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो उसमें ओवर वैक्सीनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये सच है कि बच्चों की टीकाकरण की तुलना में गर्भवती महिलाओं में नियमित टीकाकरण का दर हमेशा कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी TDAP वैक्सीन का कवरेज 56.6% है। आज भी कई चिकित्सक और समुदाय के सदस्य गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण को लेकर झिझकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण गर्भावस्था के दौरान कई दवाओं का सेवन मना होता है। हालांकि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, दुनिया भर में सुरक्षा मुद्दों का सख्ती से पालन किया जाता है, और अब हमारे पास स्पष्ट डेटा समर्थित समझ है कि क्या सुरक्षित है और क्या असुरक्षित है। मातृ टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? मातृ टीकाकरण के दो अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले, यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है, और दूसरा, यह IgG और IgA एंटीबॉडीज के प्लेसेंटल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी IgA, यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी IgG, यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवित क्षीण वायरस टीकों यानी लाइव अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइव के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कठमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित क्षीण जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, BCG और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं और अक्सर अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्धारक है। टीकाकरण के महत्व के बारे में सफल वकालत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका है। गर्भवती महिलाओं के मन में सकारात्मक प्रभाव के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनेस से सुरक्षा के लिए टेटनेस टॉक्साइड वैक्सीन या TDAP की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनेस टॉक्साइड, TDAP और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है। टेटनेस एक घातक जीवाणु संक्रमण है, जिससे मां और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनेस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनेस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान दो खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। टीटी टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। TT2 TT1 के 4 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार टीटी की एक बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन से टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें की एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक, जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी और मेनिंगोकॉकल। कॉन्जुगेट यानी संयुग्म, जिनमें आते हैं HIV, PCV, मेनिंगोकॉकल। पॉलीसैकेराइड, जिनमें आते हैं PVC और टाइफाइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।
5: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता। असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार। 90.0 में।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आपने ट्यूनिंग किया है रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निया जैन, लेकर आई हूं आपके लिए कहानियों का एक सिलसिला। और आज शुरू कर रही हूं एक कहानी जो सभी माताओं को समर्पित कर रही हूं। और आज की कहानी का शीर्षक है माँ का अनमोल प्यार। एक गांव में वृद्धा रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसके तीन बेटे थे, रवि, मोहन और सौरभ। जब तक बेटे छोटे थे, सुमित्रा ने बड़ी ममता और प्यार से उनकी परवरिश की। वह खुद भी भूखी रहकर उन्हें खिलाती, ठंड में जाकर उनकी देखभाल करती और उनकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। समय बीतता गया, बेटे बड़े हो गए, पढ़ाई करके शहर में नौकरी करने चले गए। वहां उनकी शादियां भी हो गई, वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। सुमित्रा अब बड़ी बूढ़ी और कमजोर हो चली थी। गांव के पुराने घर में वे अकेली रहती और हर रोज अपने बेटों के फोन का इंतजार करती, पर कॉल बहुत कम आते। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने किसी तरह रवि को खबर दी। रवि ने मोहन और सौरभ को बताया, लेकिन अब सब अपनी अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर टाल गए। आखिरकार पड़ोसियों ने ही सुमित्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सुमित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सोच रही थी कि जिन बेटों के लिए उसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, वे आज उसके पास नहीं है। तभी नर्स ने कहा, माँ आपके बेटे नहीं आए, पर हम है ना। ये सुनकर सुमित्रा और भी रो पड़ी। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने रवि, मोहन और सौरभ को फोन करके कड़ी फटकार लगाई और उन्हें अपनी माँ की हालत के बारे में समझाया। शर्मिंदगी और पश्चाताप से भरे तीनों बेटे तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ बहुत कमजोर हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सुमित्रा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं थी, बस तुम्हारा साथ चाहिए था। तीनों बेटों ने वादा किया कि अब वे अपनी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद से उन्होंने बारी बारी से माँ के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी सेवा की और उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा। सुमित्रा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, क्योंकि अब उसे सिर्फ बेटों का ही नहीं, उनके प्यार और स्नेह का भी साथ मिल गया। कहानी से सीख ये मिलती है, माता पिता ने हमारी परवरिश में अपना सब कुछ नुचावर किया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने, उनका सम्मान करें और उन्हें कभी अकेला महसूस ना होने दें। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी, हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010 पर। और साथ ही अगर आपके पास कोई भी मौलिक कहानी है तो मुझे भेज सकते हैं इसी नंबर पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजियो पनिन पसंदीदा।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आप सोचते होंगे कि फिर एक नई लघु कथा लेकर आए हैं, फिर आंखों में आंसू भर देंगे। बात ऐसी नहीं है, हम हर बार आपको हृदय स्पर्शी मार्मिक कथाएं सुनाकर आपकी आंखें नम ही नहीं करते, कई बार हमारी कहानी आपको गुदगुदाती भी है। बस शर्त इतनी सी है कि आप इनको ध्यान से सुनिए तो सही। तो लीजिए आज एक अलग तरह की लघु कथा आपको सुनाता हूं, निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। और ये मुस्कान आपके चेहरे पर जो आ रही है ना, इस लघु कथा के रचयिता हैं शंचराम। तो शंचराम सरन जी की ये रचना आप सुनिए, नहीं महसूस कीजिए। एक आदमी अपने दफ्तर से थका हारा पूरा दिन काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। घना अंधेरा, खूब मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था आसपास में। उसकी तो हालत बिल्कुल खराब, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दूर तक एकदम सन्नाटा और खामोशी। अब उसने कोई उपाय नहीं देखा, मजबूर होकर अपनी गाड़ी को एक साइड में लगा दिया और लिफ्ट के लिए किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। डर भी लग रहा था। काफी देर इंतजार के बाद उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। उसे आते देख उसकी जान में जान आई, वो मन ही मन खुश हुआ। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया लेकिन कुछ सुगबुगाहट नहीं हुई। गाड़ी धीरे धीरे रुककर उसके पास रुक गई। उसने गेट खोला और झट से उसमें बैठ गया, लेकिन अंदर बैठने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए। गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धक धक धक धक धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर तो कोई है ही नहीं, फिर भी गाड़ी अपने आप चली जा रही है। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से ये खौफनाक मंजर। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बाहर निकलूं या अंदर ही बैठा रहूं। वो कोई फैसला कर पाता तो वही अचानक सामने से ना एक मोड़ आया, फिर झट से दो हाथ आए और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी मुड़ गई और फिर अचानक से दोनों हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो गई। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल और किसी खतरनाक डायन के भय से ना उसने झट से मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अंदर चुपचाप छिप कर रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे रुक रुक कर गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। तभी उसे सामने एक पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उस आदमी ने राहत की सांस ली और तुरंत गाड़ी से उतर गया। वहीं पर पानी पिया और एक लंबी सांस ली। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा, उससे कहा, रुको रुको रुको, इस गाड़ी में बिल्कुल मत बैठो। अरे मैं इसमें बैठ कर आया हूं, इसमें बहुत खतरनाक भूत प्रेत है जो दिखता नहीं है, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती है। उस आदमी ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ मारा और कहा, बे साले तू बैठा कब इसमें? तभी मैं सोचूं साला गाड़ी इतनी भारी कैसे हो गई, ये मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था, रास्ते से धक्का लगाते आ रहा हूं 5 किलोमीटर से और तू इसके बीच में बैठा हुआ। कैसी लगी है आपको ये रचना? हमें हमारे टेलीफोन नंबर 705641310 पर जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए अगली कहानी तक के लिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

चलेगा काफिला यारों का साथ, सजेंगे शिकारे दुल्हन से, लहराती झीलों की बुझेगी प्यास, गूंजेगी लोरियां गलियों में, फिर बच्चों की किलकारियां बांधेगी समा, फिर लिखी जाएगी एक नई कलम से कश्मीर की तकदीर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज 14 सितंबर कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस और बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। इस दिन को कभी भी मनाया नहीं जा सकता, इस दिन को केवल याद किया जा सकता है ताकि हर एक देशवासी को वो दर्द, वो पीड़ा, उसके बारे में बताया जाए। और मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और ये दर्द और ये पीड़ा हमारे मन में हमेशा रही है, रहेगी और अंतिम सांस तक रहेगी। पर एक निश्चय है कि मैं अपने समुदाय का जो दुख दर्द है उसकी एक आवाज बनूंगा, पूरे भारत वर्ष तक इस दर्द और इस पीड़ा को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरा सहयोग हमारे आदरणीय गुरुजी रमेश मरहटा जी भी देंगे। उनकी आवाज में भी वो दर्द की बात, वो पीड़ा की बात आप जरूर सुनेंगे इस आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत पीड़ा और स्मरण का दिन है। 14 सितंबर को हम कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस और बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। ये वही दिन है जब कश्मीर की घाटी में शांति और भाईचारा की जड़ों को हिलाकर रख दिया गया था, जब आतंक और हिंसा की आग में हमारी सभ्यता, संस्कृति और असंख्य मासूम जिंदगियां झुलस गई। सन 1989-90 से जो दौर शुरू हुआ वो केवल हिंसा का दौर नहीं था बल्कि एक समुदाय के अस्तित्व पर हमला था। कश्मीरी पंडितों को उनकी अपनी जन्मभूमि, अपने गांव घर, अपने मंदिरों और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से उखाड़ फेंका गया। यह एक ऐसा अध्याय है जिससे भारतीय इतिहास कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस रात की जब लाउडस्पीकरों से धमकियां दी जा रही थी, या तो इस्लाम कबूल करो या घाटी छोड़ दो या फिर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी में अगर कहेंगे तो ये था रल्यू सल्यू या गल्यू। ये केवल शब्द नहीं थे बल्कि भाई और आतंक के तीर थे जिन्होंने हजारों परिवारों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। कोई अपना खेत खलिहान छोड़ आया, कोई अपनी किताबें और कोई तालीम छोड़ आया, तो कई मां बाप की यादों से जुड़ा वो आंगन। बच्चे स्कूल की किताबें वहीं छोड़ गए, बहनों की शादियों के सपने वहीं अधूरे रह गए और माओं की गोदी में दूध पीते बच्चे बेघर होकर अनजान राहों पर निकल पड़े। ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। दुखद ये है कि आजाद भारत में, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। हमारे माता पिता ये सोच के और ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि हम घर कब जाएंगे। क्या हमें अंतिम सांस अपनी जन्मभूमि पर लेने का अधिकार नहीं है? आज 36 साल हो चुके हैं इस दर्दनाक पलायन को, 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित हैं। जम्मू के टेंट कॉलोनियों से लेकर दिल्ली, मुंबई और देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए कश्मीरी पंडित आज भी घर वापसी का सपना देख रहे हैं। उनकी पीड़ा केवल घर छूटने की नहीं है बल्कि उस पहचान के खो जाने की है जो उन्हें कश्मीरियत की आत्मा का हिस्सा बनाती थी। सोचिए, एक बच्चा जो 1990 में 3 साल का था वो आज 39 साल का है। उसने कभी अपने पैतृक गांव को नहीं देखा, उसका कश्मीर केवल उसके माता पिता की कहानियों में है। ये दर्द सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का है। आइए आपको सुनाते हैं आदरणीय रमेश मरहटा जी की आवाज में ये दर्द और पीड़ा का एक वॉइस नोट।

मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरा इतिहास 5000 साल पुराना है। ये इतिहास मैंने वितस्ता के किनारे पे लिखा है। यह धरती मेरे पूर्वजों की है। यह मेरी संस्कृति की पहचान है। मेरी पैदाइश इसी धरती पे हुई है। सूफी संतों की यह धरती, कश्यप ऋषि, ललेश्वरी, अभिनव गुप्त, मेरा भारत, मेरे भारत का ताज, मेरा अधिकार, मेरा कश्मीर, मेरी आन भान और शान। मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ही है। मेरे इस कश्मीर को किसकी नजर लग गई? मैं पिछले लगभग 4 दशकों से अपने ही वतन में जलावतनी की जिंदगी झेल रहा हूं। मुझे अपने घर, अपनी जमीन से क्यों अलग किया गया? क्यों अलग किया गया? मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही, मैं देशभक्त हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के षड्यंत्र से सन 1990 को मुझे कश्मीर से निकाला गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला हूं।

14 सितंबर 1989 का वो भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने अभी भी जिंदा है, जब कश्मीरी पंडितों के एक रहनुमा टिकलाव टिपलो को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी दिन दहाड़े सरी बाजार। ये खबर पूरे कश्मीर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कश्मीरी पंडित समाज दहशत में आ गया। यह एक इशारा था दहशतगर्दों की तरफ से, एक चेतावनी थी। अचानक एक नारा पैदा हुआ, रिलो सेलो या गिलो, मिलो या भागो या मरो। कत्लो गारत का यह सिलसिला थमा नहीं, रुका नहीं। पंडित नीलकंठ गंजू, लसकौल, गिरिजा तिक्कु, सरला भट्ट, पंडित प्रेमनाथ भट्ट, सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके पुत्र, इनके अलावा सैकड़ों कश्मीरी पंडित सामूहिक कत्लोकारत, जैसे वंधामा, चिट्टी सिंह पुरा, नाडी मरक, इस तरह के कई वाकात पेश आए और नतीजा हुआ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा 1990।

बहुत सही और स्पष्ट कहा आपने गुरुजी। आइए आगे कुछ और बात करते हैं आपसे। कश्मीरी पंडित केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता के वाहक रहे हैं। शारदा पीठ से लेकर नीलमत पुराण तक, संस्कृत विद्या से लेकर संगीत और कला तक, उन्होंने कश्मीर को विश्वभर में गौरव दिलाया। लेकिन 1990 के बाद जब वे घाटी से निकल गए, विस्थापित हो गए, तो उनके साथ कश्मीर की आत्मा भी घायल हो गई। कितने ही मंदिर तोड़े गए, कितनी ही मूर्तियां अपवित्र की गई और कितनी ही धरोहर खंडहर बनकर रह गए। जो हमारा आशियां था वो भी आज उन 3 सीढ़ियों तक सीमित रह गया जिन सीढ़ियों के द्वारा हम उस महल में अंदर जाते थे। मित्रों, ये सबसे बड़ा दुख है कि 36 वर्षों के बाद भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। कई सरकारें आई और गई, घोषणाएं हुई, पैकेज आए, वादे किए गए, लेकिन आज भी अधिकांश परिवार विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। पुनर्वास केवल घर बनाकर देने से नहीं होगा। असली पुनर्वास तभी होगा जब कश्मीरी पंडित अपनी जमीन, अपनी जड़ों और अपने सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के साथ फिर से कश्मीर घाटी में सुरक्षित रह सकेंगे। आज 14 सितंबर को जब हम इस बलिदान दिवस पर अपने शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि इस दर्दनाक इतिहास को कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास को भूलना अन्याय को वैध ठहराने जैसा है। कश्मीरी पंडितों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आतंक और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। सच्चा भारत वो है जहां हर समुदाय, हर धर्म, हर संस्कृति को सम्मान और सुरक्षा मिले। एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विस्थापित भाई बहनों की आवाज बने, जैसे कि हर समय मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये दर्द, ये मेरा है और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं वो हमारे इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को पहचान ले, उनकी पीड़ा को महसूस करें और उनके पुनर्वास की राह में खड़े अवरोधों को दूर करने में योगदान दें, क्योंकि यह केवल कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, आज जब हम इस बलिदान दिवस पर अपने पूर्वजों और शहीदों को नमन कर रहे हैं, तो आइए सब मिलकर और टीम रेडियो वितस्ता की ओर से और वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से मिलकर प्रार्थना करें कि वो दिन जल्द आए जब कश्मीरी पंडित अपने घर आंगन, अपने मंदिरों, अपनी वादियों में वापस लौट सके। आज 36 वर्षों के बाद भी उनकी आंखों में एक ही सपना है, हमारा कश्मीर, हमारी जड़ें, हमारी मिट्टी। बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, ये केवल एक समुदाय की समस्या नहीं है, यह हम सब भारतवासियों की समस्या है। मैं भारत सोपोरी, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता से कश्मीर के उन तमाम आत्माओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के बलिदान दिवस पर। विशेष आभार रमेश मरहट्टा, अशोक पंडित, अनुपम खेर और श्रीमती निर्जा पंडित का। वॉइस ओवर और निर्देशन भारत सोपुरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में, तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: पेश है कार्यक्रम माँ अनमोल, एपिसोड 2। पेश करेंगे आरजे सेजल और भरत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में, जो खास तौर से डेडिकेटेड है सभी मदर्स को। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बारे बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी भी उनके प्यार को बयां करने के लिए शब्द कम है हमारी शब्दावली में।
2: माँ होना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। अपने अंदर बढ़ते जीवन को महसूस करना, गर्भ में उन नन्हे हाथों पैरों की हलचल होना, फिर उन नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करने का एहसास अलग ही होता है।
1: उन किलकारियों को सुनने का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन उन किलकारियों को दुनिया में सुरक्षित लाने का एहसास सिर्फ माँ को। इसलिए माँ का एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही माँ का है।

0: सिर्फ माँ बनने पर ही ममता का एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं हर औरत में पहले से ही ममता समाई होती है, चाहे वह आपकी बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो। जब भी आप दुख या किसी तकलीफ में हो तो अपने प्यार, ध्यान या प्यार भरे गुस्से से ममता झलका ही देती है।
1: शायद इसीलिए बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ और खास तौर पर मामा, इन सभी रिश्तों को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो दर्जा भी हासिल उन्हें निभाने से ही होता है।
0: कहते हैं माँ की एक दुआ हजार दुआओं के बराबर होती है, और दिन में ना जाने वो कितनी ही दुआएं हमारे लिए करती है, और आखिरकार भगवान भी उन दुआओं को टाल नहीं पाता। और इसीलिए शायद जब तक माँ का आंचल होता है, हर दिन जन्नत सा लगता है।

0: माँ दुनिया में या हमारी जिंदगी में वो शख्स है जिससे जितना भी नाराज हो या लड़ लो, वो कभी भी खफा नहीं होती। लेकिन हाँ, जब वो नाराज या गुस्सा हो तो उसे मनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन वो दिन, वो घर और ये दुनिया उसके बिना अधूरी सी लगती है।
1: बिन कहे वो सब समझ जाती है, बिना छुए हमारा दर्द महसूस कर लेती है। जो चीज हमारी आँखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती, उससे पलक झपकते ही ढूंढ लेती है। माँ जादूगर होती है, हर गम चुटकी बजाकर गायब कर देती है। जब कुछ खाने का मन ना हो तो अपने हाथों के स्वाद से पेट भर देती है।
0: कुछ भी कहो, माँ होती तो कमाल है। इसीलिए भगवान भी धरती पर आते हैं, तेरा प्यार पाने को, बच्चा बन तेरी गोद में सो जाने को, तेरे हाथ का खाना खाने को, नटखट शैतानियां कर तुझे हंसाने को, डर के तेरे आंचल में छुप जाने को, शरारत कर तुझसे डांट खाने को, निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा तुझसे पाने को।

0: आज का ये फलसफा था माँ के नाम, और ये जिंदगी तो है और थी उसी के नाम। अब इस फलसफे का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ जो माँ के नाम है।
1: जब भी दुख के साए ने घेरा, माँ के आंचल ने मुझे समेटा। जब भी पकड़ी गलत राह, तो खींच मुझे सही राह पर भेजा। जब गलत सही का बोध नहीं था, तब सही का भाव तूने समझाया। जब पल्लू तेरा छोड़ बाहर निकला, तो तेरा दिया ज्ञान समझ में आया। जब देखी पत्थर सी दुनिया, तब तेरे आंचल में समाया संसार समझ में आया। जब लोगों ने जोड़े मतलब से नाते, तब तेरी डांट के पीछे का प्यार नजर आया। जब छोड़ा तूने इस संसार में अकेला, तब माँ तेरे नाम का मतलब समझ में आया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम माँ अनमोल एपिसोड 2, पेश किया आरजे सेजल और भारत सोपोरी ने, रिकॉर्ड एडिट व कविता मौलिक आरजे सेजल, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार यादव। प्रस्तुत करेंगे भारत सुपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। कला एक प्रकार का कौशल है। कलाकार का कौशल उससे कहा जाता है जिसमें कलाकार क्रिया, शिल्प एवं तकनीक के अतिरिक्त कृति को आकर्षित बनाने के लिए अपने मानसिक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा नवीनता लाने के लिए अनेक युक्तियां खोजता है। जो ये खोज करता होता है वो ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एवं एक अच्छा इंसान होता है। ये सारे शब्द आज के आमंत्रित मेहमान की शान में पड़े गए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिचर्चा, जहां हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की और रंगमंच की। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज के मेहमान इन तीनों विधाओं में माहिर हैं और गौरव इस बात का है कि अनिल कुमार यादव जी मेरे शिष्य भी हैं। करते हैं स्वागत श्री अनिल यादव जी का, जो एक राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है।
1: पहले तो मैं इस FM का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और आप मेरे गुरु जी हैं और मुझे अपने पे फक्र फील हो रहा है कि मैं अपने गुरु के सामने मैं इस परिचर्चा में शामिल हुआ हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये बातों का सिलसिला इस कार्यक्रम के दौरान हमारा चलता रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को अपने अंदाज में दें।
1: पहले तो मैं सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। अपने बारे में मैं ज़्यादा नहीं, छोटी सी बात में कहना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म है अम्बाला छावनी में ही हुआ है, लेकिन जो मेरा लालन पोषण अगर कहें तो यूपी, उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद में जो अयोध्या के पास है वहाँ पे हुआ। मेरा जो आरंभिक शिक्षा है 5वीं तक मैंने वहीं से ग्रहण की। उसके बाद मैं अम्बाला आया, फिर यहाँ से मेरे जितने भी क्वालिफिकेशन है वो अम्बाला गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ हुई। उसके बाद आज मैं PhD स्कॉलर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैं फिल्म में PhD कर रहा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एक है।
0: तो जो आप PhD कर रहे हैं तो ये फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रोडक्शन के बारे में ही आप PhD कर रहे हैं?
1: ये सर मैंने, क्योंकि क्या है PhD का एक रूल है कि आपको पहले देखना होता है कि किस चीज़ पे रिसर्च हो रखी है। तो मैंने बहुत सारे 100-150 रिसर्च मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जिस पे रिसर्च नहीं हुई है उस पे करना चाहिए। एक है सिमियोटिक्स या मिजन सीन हम बोलते हैं, सिमियोटिक्स का पार्ट है जिसके अंदर साइन सिंबल के थ्रू हम फिल्म को प्रेजेंट करते हैं।
0: ठीक।
1: तो इस पे अभी तक इंडिया के अंदर PhD नहीं हुई है, अगर हुई है तो एक शोध के रूप में हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो विषय है वो सिमियोटिक्स रखूँ
0: जी।
1: तो सिमियोटिक्स में कई सिद्धांत हैं, अलग अलग लोगों ने दिया है, तो उनको लेकर मैं करूँगा। जैसे सर धुआं उठता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, आग लगी है तभी वो धुआं उठा है, तो इस तरह सिमियोटिक्स मैं यूज करूंगा PhD में।
0: हमें इस बात की भी खुशी है कि अम्बाला में हमें एक PhD यानी एक डॉक्टर जिसको कहते हैं, एक उपलब्धि हासिल होती है। और फिल्म मेकिंग में या फिल्म के साथ जुड़े हुए इन विषयों के साथ हमें एक एक्सपर्ट मिलेंगे तो अम्बाला के लिए ये एक खुशी की बात है, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे आपसे सीखेंगे। आपने अभी कहा कि आपकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या में हुई है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कला का सृजन उसी समय से हुआ था?
1: जी सर, जब मैं छोटा था तभी से मेरा एक्टिंग का, डांस का बड़ा शौक रहा है। और वो शौक कैसे चढ़ा, स्कूल में फंक्शंस होते थे तो जो डांस का और एक्टिंग का होता था मैं उसमें सबसे आगे होता था। तो उसका एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा कि क्या रहा। टीचर क्या कहते हैं कि ये बुक है, आप लो इसमें से अपने डायलॉग ढूंढ लो। हम हैंड खड़े करते थे, ये रोल मैं करूंगा, तो मैंने ले लिया। तो हम क्या करते हैं, सारे बच्चे कॉपी ले आते थे उस टाइम, 5 रुपए की मिलती थी, पेन मैं लेकर आ गया। मैं कहा होंगे 10-12 डायलॉग्स, तो मैं कह रहा हूँ मैं पहले ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते एक पेज पे सिर्फ एक वर्ड का डायलॉग मिला, वो था आक्रमण,
0: बस इतना ही बोलना था।
1: यस, अभी और सुनो सर, फाइनल एंड प्रैक्टिस मैं अलग अलग आवाज में आक्रमण आक्रमण अलग अलग आवाज निकाल रहा था। जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन सामने अर्जुन था, तो मैं सेनापति था, तो मुझे बोलना था। अर्जुन ने पहले तीर लगा दी, चला दी, मुझे डायलॉग नहीं बोलने दिया।
0: अच्छा, जो आक्रमण के बाद तीर चलना था वो पहले ही चल गया, आपका डायलॉग उसमें दब गया।
1: अब मैं कहूँ मरूं कि मैं बोलूं, तो मैंने कहा मरना ही सही रहेगा क्योंकि तीर लग चुकी है। तो ऐसा हुआ था, तो मैं बाद में उस लड़के को बोला, मैं कहा यार एक डायलॉग मैंने 2 महीने रटे, अच्छा आवाज निकाल निकाल के करी, और तूने तीर पहले मार दिया यार। तो कह रहा चल अगली बार तू बोल दियो।
0: चलिए, मतलब ये एक आपकी शुरुआत यहाँ से कला के प्रति रही है, तो उसके बाद क्या ऐसा कभी हुआ कि नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होने दिया?
1: नहीं, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ ज्यादा। फिर एक्साइटमेंट में करा, तो उसमें मैं हवलदार बनना था, तो हवलदार में थे डायलॉग्स थोड़े बहुत। अब क्या था उसमें, स्टार्टिंग में ढोल लेकर अनाउंसमेंट करना था कि सुनो सुनो आज ये होने वाला है, तो अब ढोल नहीं मिली। टीचर, मैंने कहा सर ढोल नहीं है, फाइनल चल रहा है सर स्टेज पे। कह रहे तू अपने पीछे ना हाथ मार मार के कह सुनो सुनो। मैंने कहा मन में कुछ था, अब बताता हूँ मैं शुरू हो गया सुनो सुनो एंड पीट रहा हूँ मैं पीछे से, और बड़ा मजा आता था।
0: अनिल जी, आपने कहा कि जो आपका पहला डायलॉग था और वो आप उस समय नहीं बोल पाए क्योंकि तीर पहले ही चल गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो डायलॉग आज आप हमारे श्रोताओं के लिए बोलें, जिन आवाजों में आपने उसको तैयार किया था, आप एक बार उन आवाजों को दोहराएं ताकि एक दिल की तसल्ली हो जाए कि डायलॉग तो हमने बोल दिया।
1: हाँ जी सर, वो था आक्रमण। तो मैंने अलग अलग आवाज, मैंने कहा आक्रमण आक्रमण आक्रमण, तो इस तरह मैंने
0: इस तरीके की आपने तैयारी करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि आप यूपी के बाद जो आपकी बाकी की शिक्षा है वो अंबाला में हुई, तो अंबाला आगमन कैसे हुआ और अभिनेता बनने का ख्याल कब से आया?
1: यस सर, सर मैं 5th वहाँ कर चुका था, तो मैं यहाँ घूमने आया था। फादर मेरे यहाँ जॉब करते थे, तो मम्मा के साथ आ गया मैं, तो 1 महीने की छुट्टी थी, तो यहाँ पे रुका, तो यहाँ जो एनवायरमेंट था, बच्चे थे, उनके साथ घुल मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। तो मैं एक स्कूल में गया, तो कह रहे एक क्लास पीछे लेंगे। मैं इंटेलिजेंट था अपने टाइम में, मैंने कहा पीछे तो मैं जाऊँगा नहीं। फिर किसी ने अप्रोच करे, तो गवर्नमेंट स्कूल में 6th में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद ये अपना कबाड़ी बाजार में है जो, वो 12 बजे क्लास लगती थी, तो आराम से 12 बजे पहुँच जाते थे और 5-6 बजे छुट्टी होती थी। तो वहाँ पे भी जैसे डांस का प्रोग्राम होता था 12 बजे, तो वैसे ही, और सारे जो मेरे फ्रेंड थे यूपी के थे, 4-5 फ्रेंड थे, तो और अच्छा लगा। तो इस तरह वहाँ से हमें एक अच्छा सा वो मिल गया, माहौल मिल गया। तो फिर मैंने कहा गांव क्या करने जाना है। फिर थोड़ा सा ये भी रहा कि शहर जो है वो अपने आप में आपको
0: अच्छा, कुछ नई चीज़ें लेके आता है।
1: फिर उसके बाद स्कूल करने के बाद फिर मैं कॉलेज में एंट्री मेरी हुई, तो आपको पता है कॉलेज में जाना मतलब कि आप एकदम, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, नए नए कपड़े सेंट सुंट लगा के, वो एक आता था बहुत महकता था वो, मैंने छिड़का घड़ी पे भी पड़ गया था। मेरे को इतनी ज़्यादा स्मेल आने लगी थी, मैं घड़ी फेंक दिया था मैंने। जब मैं वहाँ पहुँचा तो टीचर पूछते हैं कि आपका मतलब आप क्या बनना चाहते हो, तो सारे बच्चे जी हम डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट करना चाहते हैं, हम
0: इंजीनियर बनना चाहते हैं।
1: इंजीनियर तो हमारे मास कम्युनिकेशन में नहीं होता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: तो वहाँ पे कोई कह रहा हम रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, हम एंकर बनना चाहते हैं, टीवी में जाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में जाना चाहते हैं, इस तरह का। मेरी बारी आई, कह रहे हाँ अनिल तुम क्या बनोगे। मैं कहा मैं एक्टर बनूंगा। तो वहाँ पे 35-40 बच्चे थे, वो हंसने लगे मुझे देख के।
0: ठीक,
1: तो मैंने सबको देखा, तो सर ने कहा चुप हो जाओ ऐसे नहीं हंसते। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस हुई, सब बोलते थे, तो मेरे को टीचर ने, मेरे रविशंकर नाम है गुरुजी का, उन्होंने मुझे कहा कि तू रेडियो में ट्राई करो, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा है दम। मैंने कहा सर मुझे एक्टर बनना है, ना मुझे टीवी में जाना है, ना रेडियो में जाना, मुझे हीरो बनना है। इसलिए तो मैंने किसी से पूछा था, कह रहे ये सब्जेक्ट पढ़, ये फिल्म से रिलेटेड है, यहाँ डांस वांस भी होता है।
0: ठीक है,
1: तो वहाँ से फिर सर ये जर्नी स्टार्ट हुई। हमारे यहाँ प्रेस डे मनाते हैं, तो वहाँ पे खुद लिखी, हमने स्क्रिप्ट लिखी, वो था उसका फर्स्ट हमने करा था, औरत की दुश्मन औरत, तो उसके हमने स्क्रिप्ट लिखी, उस पर एक्टिंग भी करी, मैं फादर का रोल मैंने करा। तो मैं जिम जाता था ना, तो टीचर कह रहे तू कहाँ से लगता है फादर, कह रहे ऐसे कौन फादर चलता है एकदम चौड़ा होके। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो लास्ट में जब मैंने बाल वाल कटिंग कराई, गमछा वमछा डाला, थोड़ा झुक के खुले खुले ड्रेस से डाला, तो सर ने अच्छा वो करा था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, डांस करना शुरू करा। और उस टाइम में सर नाइट ड्यूटी भी करता था।
0: अच्छा,
1: नाइट ड्यूटी करता था तो यहाँ भी जाना होता है। और सुबह मैं आर्मी स्कूल में एज अ पार्ट टाइम मैं था डांस टीचर, कोरियोग्राफी करता था मैं, वहाँ भी जाना होता था। इसी दौरान जब एक बार घूमते घूमते पता लगा आपके पास, जब हम आए कि वर्कशॉप लग रही है।
0: इससे पहले मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने बात कही उसी में से एक सवाल मेरे मन में आया, वो ये है कि संघर्ष, जब हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं, आप यंग थे, आप कॉलेज गए, आप यंग अभी भी हैं, बट कॉलेज में ऑब्वियसली हम हमारी जिंदगी शुरू होती है। तो क्या आपका कॉलेज को एजुकेशन था?
1: यस।
0: ओके, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें घर के प्रति और या कोई फिनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि हम ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो क्या इस वजह से आपको बाकी काम भी करने पड़ते हैं? आप जैसे आपने कहा कि नई ड्यूटी आप कर रहे थे,
1: फैमिली की तरफ से तो कुछ नहीं था, मुझे लगा कि फादर कितनी इनकम नहीं थी,
0: ठीक है,
1: तो मुझे लगा कि जो शौक है अपने, अगर मैं कमाता हूँ चाहे 10 कमाऊँ 20 कमाऊँ, तो मैं अपने ऊपर
0: उसी से पूरा करूँ,
1: उसी से पूरा करूँ
0: जी।
1: तो वो तो मना करते थे, तू नाइट ड्यूटी क्यों कर रहा है, मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन अच्छा। मेरा दिल नहीं मानता था। मैं क्या क्या करूंगा यहाँ, फिर इधर उधर घूमूंगा। तो उस टाइम मेरी पढ़ाई भी मैं रात को कर लेता था साथ में, जब मैं कॉलेज में था ये चीजें तो थी, लेकिन कहते हैं कि गुरु बिना कोई गति नहीं है
0: जी।
1: ये तो देखो सर, एक दोस्त है, दूसरे दोस्त कहता है यार तू बहुत अच्छा डांस करता है, एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता। हर कोई अगर आपको जो पसंद करता है वो तो कहेगा, हर माँ के लिए
0: एक बच्चा तो लाडला
1: ही है, पीला वो लाडला ही होता है, सुंदर होता है, टीका लगा देते हैं तो इसी तरह। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, और उस टाइम सर ज्यादा दिन की तो बात है नहीं, 2007-08 की बात है, तो इस टाइम जो एक खुमार चला फिल्मों का, तो उसमें ये था अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो मैं था नहीं। उसके साथ ही मैंने कहा अच्छा डांस आना चाहिए और आपको
0: एक्टिंग होनी चाहिए।
1: मैंने कहा शकल तो चलो कोई नहीं, मेकअप वेकअप करके एक दो फोटो खिंचाए उसमें तो अच्छा लग रहा था, मैं कहा चलो वो तो मैं कर लूंगा,
0: मैनेज कर लेंगे।
1: तो कॉलेज में कई बार ऑडिशन हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल के लिए, आते थे कई, आए थे, उन्होंने नाम नहीं ले सकते क्योंकि सब हाँ, जगह गुरु गुरु
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: बट जब वो बोलते थे कि इस तरह करो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता था। मैंने कहा ये तो ऐसे है कि आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला के आप एक्टिंग नहीं दिखा सकते, बट कहीं ना कहीं उनको चाहिए होगा उस वाले
0: शायद किरदार की जरूरत उस समय वो,
1: लेकिन मेरे को ये नहीं था। तो मुझे लगा कि यार नेचुरल एक्टिंग, आप आराम से प्यार से बोलो जैसे हम रियल में बोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप दे लो, आप सिखाने आए हो, आप पहले से चाहते हो कि सिखा हुआ बच्चा आपके पास आए, तो फिर आप सिखाओगे क्या। तो फिर इसी तरह मुझे पता लगा कि
0: यहाँ भी मैं आपको रोक लेता हूँ अभी हम आपकी जो ये जर्नी है हमें जिज्ञासा है इसके बारे में सुनो, और हमारे जो श्रोता हैं उनको भी जिज्ञासा हो रही होगी ये जानने के लिए कि आगे जब आपको लगा कि अगर मुझे कोई भी काम करना है उसके लिए मुझे पहले सीखना जरूरी है, फिर आपने क्या किया है। बट मैं चाहता हूँ आपसे ये पूछूं पहले, तो क्या संगीत की आपने अभी बात की, डांस की आपने बात की, तो क्या संगीत के साथ आप जुड़े हैं, क्या संगीत आप सुनते हैं?
1: सभी को पता है कि संगीत के बिना एक तरफ से जीवन व्यर्थ। अगर हम भी कहीं बैठे होते हैं सुकून के लिए हम म्यूजिक सुन लेते हैं, रिलैक्स, आजकल एक थेरेपी हो गई है कि आप म्यूजिक पढ़ो सुनो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। संगीत तो एक तो कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि संगीत ना सुनो तो नींद नहीं आती थी मुझे, और फिल्म लाइन में तो एक छोटी सी छोटी चीज के लिए भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल है
0: जी।
1: तो म्यूजिक तो एक अहम है, और इस तरह जो हमारी जिंदगी चल रही है तो उसमें अगर म्यूजिक ना हो तो वो बेरंग हो जाएगी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गाना आपका जो पसंदीदा हो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके मन में इस समय आ रहा है?
1: मैं सर लाइफ यानी जिंदगी की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: तो मैं ज्यादातर इस एक गाना है जो मैं गुनगुनाया करता हूँ, और जो उतार चढ़ाव है उसके लिए मुझे लगता है ये जो सॉन्ग है ये उस पे फिट बैठेगा। वो है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: अनिल जी, अगर अभिनय की ओर दिलचस्पी थी तो डांस भी क्या मन को भाता था?
1: मुझे जो लगता है कि जो डांस करना, उस सॉन्ग के ऊपर एक्सप्रेशन देना, वहीं से तो एक एक्टिंग की शुरुआत हुई। कि मुझे लगा कि देखो, डांस में तो हम एक्सप्रेशन इधर उधर मुंह बना लेते हैं, लेकिन रियल जब आप बोलते हो, उसके साथ जो एक्सप्रेशन आना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक्टिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: तो क्या हम ये मान के चलें कि जब एक एक्टर घर से बाहर निकलता है तो जितने लोग आसपास होते हैं तो क्या उनकी नजर उनके एक्सप्रेशंस पे रहती है, ताकि वो ये समझ जाए कि किस किरदार की एक्सप्रेशन क्या?

0: होनी चाहिए।
1: यस सर, जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से, हाव भाव से पता लग जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है या जो बोल रहा है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है।
0: ऐसा हो सकता है, ये बात
1: ऐसा
0: तो
1: हो
0: बहुत आपने, बहुत आपने
1: सकता
0: पते की बताई, यानी कि अगर हमने गुस्सा करना है तो हम हंस के गुस्सा नहीं कर सकते, कि वो दो चीजें आपस में मेल नहीं खाती है। तो गुस्सा करना है तो हमें चेहरे पे ऐसे भाव लाने पड़ेंगे ताकि वो गुस्सा दिखे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभिनय जुनून से, दृढ़ता से, पक्के मन से होता है। क्या ऐसे भी समय आया कि एक्टिंग आप करना चाहते थे पर समय अनुकूल नहीं था?
1: यस सर, अभी मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था, एक तो नाइट ड्यूटी किया करता था मैं, तो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी होती थी, वहाँ रात भर जागना होता था, आप सो नहीं सकते थे, और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासें होती थी कॉलेज
0: कॉलेज
1: की।
0: जी।
1: अब उसके बाद 5 से 6 आपको कंप्यूटर सेंटर भी जाना है,
0: जी।
1: तो अब जो 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम है उसके अंदर आपको खाना भी है
0: और आराम भी करना है।
1: आराम भी करना है, तो मैं सोचता था आराम तो पूरी जिंदगी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जो एक एज है उसमें जितना ज्यादा सीखो उतना कम है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम हमारा साथ दे रहा होता है कि भाई अभी पावर है, तू चाहे ना भी सो तो कोई बात नहीं है, संडे तो है, उस दिन सो लियो किसी दिन। तो जब मैं कॉलेज में था, आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि जब हम कॉलेज में थे, एक गुरु की खोज मैं कर रहा था, तब मैं, मेरे फ्रेंड ने बताया कि कहीं वर्कशॉप है, उसका नाम प्रीतम है, हम साथ में रहते थे
0: जी।
1: तो मैंने कहा चल चलते हैं देखते हैं, क्योंकि मैं कहा देख गुरु तो चाहिए चाहे जैसे करके, हम मुंबई तो हम जा नहीं सकते, एक तो इतनी खतरनाक कहानियां हमने सुनी होती है मुंबई के बारे में, तो सोचे नहीं, तो हमने कहा क्यों ना अम्बाले में देखे, तो हम एड्रेस हमें मिल गया था, हम घूमते हुए निकले ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ, कोने पे जब हम अपना गांधी मार्केट के उस लास्ट में इंदिरा पार्क जो पार्क है वहाँ पहुँचे, तो देखा कि ऊपर है, तो हम ऊपर गए, तो मुझे लगा कि हम दो थे, बाकी आने वाले थे, कोई आया नहीं था, तो उस टाइम आपसे मुलाकात हुई सर। तो अब मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी नहीं उस टाइम पता होगा, तो ये था रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें, तो हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा करना पड़ेगा, तो उसके पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चल दे दे मैं तुझे दे दूंगा, फिर मैंने उससे पैसे लिए, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया और 10 दिन हमने जो वर्कशॉप है किस तरह बोलते हैं, आपने सर बताया था, मैं अभी जो पहले मैंने जो बातें बोली है वो आपसे सुन के ही बोली थी, ये तो आप, मैंने अपनी तरफ जब आपने तारीफ कर दी कि आपने बड़ी बात बोल दी, जब मैं वर्कशॉप ले रहा था तो आपने ही बताया था, एक आपने कहा कि अच्छा एक जिसका पैर खराब होगा वो कैसे चलेगा, हमने सबने चल के दिखा दिया, तो कहा कि कैसे ये आपने कैसे करा, हमने कहा जी फिल्मों में देखा, सबने कहा फिल्मों से देखा है, नॉर्मल यही बोला कि फिल्मों से देखा, फिर आपने बताया कि अगर मान लो एक सब्जी वाला है, अगर उसका रोल करना हो तो मैंने बोला फिल्मों में देख लेंगे, फिर आपने बताया कि जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से आपको कई नए नए करेक्टर मिल जाएंगे। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जहां भी हूं, मैं कभी भी फिल्मों में किसी भी करेक्टर को मैं कैच नहीं करता हूं, मैं बस में जाता हूं या कहीं भी जा रहा होता हूं, मैं लोगों को चेहरे देखता हूं और मैं अपने में खुश रहता हूं, हंसता रहता हूं, मुझे कई करेक्टर रियल लाइफ से मिलते हैं, तो वहां से मैंने या आप जब सीखा तो मैं आपको, आप भी थे वहां पे, आप सिखा रहे थे, तो जो हिस्सा मैं, वो श्रोता जो है मैं उनको बताना चाहूंगा, 10 दिन का था, बहुत अच्छा लगा, हमारे लास्ट जब हमें करना था इसको सुभाष पार्क में इसका होना था, तो एक लड़की का किरदार भी था इसके अंदर, मैं बना हुआ था सब्जी वाला,
0: मुझे अब याद आ रहा है,
1: सब्जी वाला मैं बना हुआ था, तो हम कर रहे थे अच्छे से, एक्टिंग हो गई, अब ये था जो लड़की वाला पोर्शन था वो खाली जा रहा था, तो हम सारे कर रहे थे, तो एक दो दिन पहले पता लगा उसकी थोड़ी शायद तबीयत खराब थी, वो आ नहीं पाई,

0: करे अब इसका कौन करेगा, तो मुझे वो कैरेक्टर मुझे दे दिया गया। तो मैंने अब क्या था उसमें आवाज थोड़ी सी
1: चेंज करनी थी
0: और चुन्नी को ओढ़ना था, घूंघट करना था। तो वो फिर वो कैरेक्टर फिर मैंने करा, उसमें रोने का भी था, चूड़िया तोड़ के उसके छाती के ऊपर मारना, मैंने तेजी से मार दिया था उसके, करो धीरे मारो, तो ये हो गया था। फिर उसके बाद जब फाइनल जब हुआ वहां पे, और ये बहुत अच्छा था सर, आपने देखो कई बार क्या होता है बच्चे को जब हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना वो घबरा जाता है,
1: ठीक।
0: तो जब वहां पे था ऑडियंस को इकट्ठा करना, अब
1: पार्क में जो पार्क चलते हुए लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना, बुलाना। हाँ, जी।
0: अब कह रहा कि भाई चलो अब इनको बुलाओ, अब सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। आपने कहा अनिल, मैं भी देखा, मैं कहा ये क्या, मैं कहा बोलूं क्या। फिर मुझे वो जो बताया आपको कि बचपन में जो सिपाही था वो ढोल बजाते बजाते, मेरे को याद तो वही आया था, तो हमारे पास वो बजाने वाला था, तो मैंने डफ
1: जी,
0: तो डफ लेकर फिर हमने शुरू करा, सुनो फिर वहां पे जो
1: काफी सारे लोग आए थे, और हमारा वो पहला वे थिएटर ग्रुप का वो पहला एक्सपीरियंस था कि जो हमने कहीं स्टेज के बाहर किसी जगह किया था, जहां हमने लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बाद मुझे याद है उस नाटक का नाम, छोटे नाटक का नाम था बेल नींबू, और इसको डायरेक्ट किया था अतुल वशिष्ठ ने, जो हमारे वीटी जी के मेंबर उस समय थे।
0: yes,
1: जिंदगी बहुत आगे की ओर बढ़ती है, जितने भी लोग वे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े, बहुत सारे लोग तो आगे की ओर बढ़े, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है। पर हम आपकी बात पे आते हैं, तो आपने ये कहा कि जो एक अभिनेता है उसको ये ऑब्जर्व करना जरूरी है जब वो घर से निकलता है, तो किस व्यक्ति की क्या हावभाव है वही आप किसी किरदार में आप डाल सकते हैं।
0: यस,
1: तो वे थिएटर ग्रुप के साथ जो आपकी जो जर्नी शुरू हुई थी, क्या आपने इससे पहले भी यहाँ अंबाला में किसी ग्रुप के साथ काम किया था या ऐसे किसी नाटक में परफॉर्म किया था?
0: आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में सर, गुरु तो कोई था नहीं, बस अपने जिधर लिखना है लिख लो, बोलना है बोल लो, कैसे बोलना है सिंपल चल रहा था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। तो उसके लिए एक गुरु की खोज में लगा हुआ था कि कोई मिले, कईयों से मिला था मैं, तो मतलब मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि यार ना कहीं कमी है। तो फिर जब मैं आपका वर्कशॉप था वो लगाया, और सबसे बड़ी बात मैं उसको अच्छा डे बोलूंगा अपनी लाइफ का कि एक साथ मैंने 3 किरदार निभाए थे, और मैं शायद मुझे लगता है कि ऐसा कम मौका मिलता है लोगों को एक अपोजिट करेक्टर, एक फीमेल आर्टिस्ट भी, और वो भी 2 दिन पहले उसके डायलॉग्स याद करके उसको प्ले करना, सब्जी वाले का रोल प्ले करना, और ऑन द स्पॉट एक अपना लोगों को इकट्ठा करना, मुनादी
1: अनाउंसमेंट
0: का। तो ये चीजें सर बहुत अच्छा लगा, उस चीज को फॉलो करते हुए आज अच्छा लगता है जब हम सामने वालों को बताते हैं, उसे भी बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करो। कई बार क्या होता है ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उन्हें फिल्मों के कई बार बिजी भी रहते हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आप ये करेक्टर लो और आप अच्छे से काम कर सकते हैं।
1: देखिए अनिल जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि वे थिएटर ग्रुप के साथ आपने वो समय हमारे साथ बिताया, एक ग्रुप कोई सा भी हो वो तभी चलता है जब वो निरंतर काम करता है, और ऐसे ही निरंतर काम अनिल जी ने भी किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वे थिएटर ग्रुप भी बहुत खुश होता है आपके काम से, और आज आप अच्छे फिल्मकार हैं, आपने कई सारे आपने फिल्में बनाई हैं, हम उस विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उसी वे थिएटर ग्रुप के माध्यम से अंबाला कैंट को ये पहला FM स्टेशन मिला है, और आज भी आप ये मान के चलें कि आप वे थिएटर ग्रुप के साथ ही जुड़े हैं और आज इसका हिस्सा बने हैं। एक हम और गाना यहां पर लेते हैं अनिल जी की पसंद का, श्रोताओं आप सुनिए ये गाना, और हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर रूबरू होंगे।

0: अनिल जी, मुझे याद है एक बार आपके कॉलेज में आया था। आपके सहयोगियों ने आपने बहुत मान सम्मान दिया था। आप मुझे अपने कॉलेज के रिकॉर्डिंग रूम में भी ले गए थे। आज बारी हमारी आई है आपको अपने रिकॉर्डिंग रूम में आमंत्रित करने का। कैसा लग रहा है?
1: सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश था। तो मतलब मैं चाह रहा था कि अपने गुरुजी को मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ कि सर मैंने ये चीज़ मंगवाया, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए। मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि जब सर मेरे पास आए थे तो मैं एस ए जैन कॉलेज अम्बाला सिटी, वहाँ पर मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कार्य कर रहा था। मास कम्युनिकेशन जो मेरा डिपार्टमेंट था उसमें मैं बच्चों को, मेरा ज़्यादातर फोकस होता है प्रैक्टिकल में। मैं 5 साल एस ए जैन कॉलेज में मैंने वहाँ सर्विस दी है। मैं वहाँ कैसे पहुँचा मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, मैं टीचिंग में कैसे चला गया। मेरे एक सर हैं अतुल यादव सर, हिस्ट्री वाले टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि बेटा तुझे कितनी फिल्में मिल जाती हैं? मैंने, और कब कब मिलती है? मैंने कहा साल में एक आधे तो मिल ही जाती है। कह रहे पैसे मिलते हैं? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर फैमिली कैसे चलाओगे? मैं सोचा कि ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा बेटा साइड बाय साइड इनकम का सोर्स रख, जिससे तेरा परिवार भी चले, ये शौक तो चलते रहेंगे।
0: ठीक है,
1: तो उनकी बात मान के फिर मैंने उस टाइम प्रिंसिपल थे प्रदीप स्नेही सर, उनके पास मैं गया, इंटरव्यू हुआ, मेरी सिलेक्शन हुई, तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा। 5 साल काम करने के बाद, कोरोना के बाद, फिर मैं वहाँ, ये अकाल डिग्री कॉलेज है संगरूर में, वहाँ पे मैंने 1 साल सेवा दी। उसके बाद जेएमएन कॉलेज में 1 साल पढ़ाया। जब यहाँ पढ़ा रहा था तो मेरी पीएचडी में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मैं कुरुक्षेत्रा चला गया, जहाँ अब मेरा गाइड मुझे अलॉट होंगे जिनके अंडर मैं पीएचडी।
0: ये जो जिंदगी का सफर है, इसके लिए जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर मरहले पे हम कुछ नया सीखते हैं और तभी जाके हम जिंदगी के साथ रूबरू होते हैं। आगे चलते हैं, आपकी उपलब्धियां तो अब बहुत हुई हैं। श्रोताओं को आप खुद ही विस्तार में बताएं कि आपने फिल्म बनाने में या आपने जो बहुत सारे भजन हिंदी और पंजाबी में या हरियाणवी में आपने तैयार किए हैं या कुछ और आपने किया है, तो कृपया आप विस्तार में बताएं।
1: जब इस लाइन में आया तो पहले जितने भी शॉर्ट्स फिल्में हैं, मैं पहले बताना चाहूँगा कि 30 से 40 फिल्में, शॉर्ट फिल्में मैं कर चुका हूँ। 2 फीचर फिल्म है जो भोजपुरी में थी, वो हाफ हो गई थी, बजट की वजह से वो रोकनी पड़ी है। उसके बाद भोजपुरी कम से कम 60-70 गाने हैं जिसमें मैं एज एक्टर मैंने काम करा हुआ है। उसके बाद पंजाबी और हरियाणवी डिवोशनल सॉन्ग, उसमें भी एज अ मॉडल मैंने वर्क करा हुआ है, और साथ में एडिटिंग भी मैंने करा जो सोनी टेक और कई अच्छे अच्छे चैनल्स जो है उन्होंने सेलेक्ट करा था। तो इस तरह काफ़ी सारा, और अभी मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे टाइम लाइन पे है, हम उस पर काम करेंगे।
0: यहाँ पर मुझे आपने एक बात कही कि आपने भोजपुरी में भी बहुत सारे गाने किए हैं और तैयार किए हैं, तो भोजपुरी क्या वो भाषा है जो आपके बचपन के साथ जुड़ी है, जब आपने, जहाँ आपका जन्म हुआ, और क्या वहाँ पर ये बोली जाती है या आपके घर में भी भोजपुरी या अवधी बोली जाती है?
1: सर अभी यहाँ पे जैसे हम दूर रहते हैं तो लोगों को ज़्यादातर जो फिल्में सुनते हैं, देखते हैं, वो भोजपुरी उनको लगता है। यूपी में अवधी बोली जाती है।
0: अच्छा,
1: भोजपुरी अलग एक बिहार की एक भाषा है जो बोली जाती है। वहाँ फिल्म जो है वो ज़्यादा उठ चुकी है, इसलिए भोजपुरी सबके जुबान पे होती है। कोई यूपी से भी आता है तो उसे भी भोजपुर का बोलते हैं, लेकिन जो अवधी है बॉलीवुड में भी यूज़ की जाती है। ये मैं उस शहर से हूँ, उस स्टेट से हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाती है। लोग भोजपुरी बोल देते हैं लेकिन अवधी होती
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा, वो अवधी होती है, वो भोजपुरी नहीं होती है।
1: नहीं होती है।
0: तो आपने इतने सारे, आपने कहा कि गाने आपने किए हैं, कुछ फिल्म्स भी है जो बाद में तैयार कंप्लीट नहीं हुई, तो क्यों ना हम आपसे भोजपुरी में या अवधी में, जिसको हम भोजपुरी कहते हैं असल में वो अवधी है, तो कुछ आप हमें सुनाइए और हमारी श्रोताओं को भी सुनाइए।
1: मैं 2 लाइनें गुनगुना दूंगा।
0: जी जी।
1: उसको थोड़ा अवधि वाले भी अब क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल के चक्कर में वो थोड़ा भोजपुरी टच मार देते हैं। मैं कहूँगा ये मेरी एल्बम का भी गाना था और ये गाना मैंने लिखा था उस टाइम था, ये था टाइटल सॉन्ग था भौजी तोहार बहिनिया। तो उस टाइम क्या था, थोड़ा शहर से लोग गांव जाते थे, लड़कियां भी जाती थी ना, तो जींस विंस का बड़ा वो रहा है। तो मैंने लिख दिया था और ये लिखा था मैं जब छोटा था तब, लेकिन मौका मिला था बहुत टाइम, तो मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा। ये था अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, जब चला तयू रोड पे, जब चला तयू रोड पे छुरिया चल जाइल हो, अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली। ये सब
0: बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छे से पेश किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये होता है कलाकार जो किसी भी जगह पर कहीं पर भी अपनी प्रस्तुति देता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक ये थोड़ा सा हमारे जो इंटरव्यू है उसमें एक ये थोड़ा सा चेंज आया। आपसे इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सवाल और करना चाहूंगा, आपकी फिल्में ज्यादातर सामाजिक विषयों पर बनी है, ऐसा क्यों?
1: सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ज्यादातर जैसे यूपी से बिलोंग करा

0: आप उन लोगों तक भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जो आपको नहीं जानते या आप उनसे कभी मिले नहीं हो। तो फिल्म जो एक, जैसे मैंने कहा, एक माध्यम है, तो मैंने सोचा कि जो मैं अगर पैसों से या किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं क्या छोटी छोटी फिल्में बना के मैं लोगों को जागरूक करके उनको किसी नुकसान से बचा के या किसी चीज़ का क्या नुकसान है, इन चीज़ों को लेकर मैं फिल्में बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं फिल्मों के जरिए मैं एक समाज सेवा कर सकूँ, इसलिए मेरी जितनी भी फिल्में हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कई बार कोई मुझे यह ना कह दे, अच्छा ये अनिल यादव वो है जो सामाजिक फिल्में बनाता है।
1: जी जी।
0: तो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है सर।
1: देखिए, समाज के अंदर रह के हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से अपना योगदान देता है। आपने बहुत ही सही तरीका ये चुना कि अगर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, फिल्म या म्यूजिक के द्वारा आप तक उस तक पहुंचते हैं। और ये चीज जो आपने सोची और ये काम कर रही है, आपके फिल्में हम भी देखते हैं। जब आपकी कोई भी फिल्म आती है तो हम अपना समय निकाल के उसको देखते हैं। हमें पता है कि उसमें कोई एक सामाजिक सरोकार होगा, उसमें कोई शिक्षा होगी जो लोगों के लिए काम आएगी। इसके साथ ही मुझे याद आ रही है एक फिल्म आपने स्नेह बनाई, और उस स्नेह में भी आप लोगों ने, और जो उसके निर्माता सुभाष बंसल जी हैं, और आप लोगों ने एक ऐसा मुद्दा उसमें लिया जो कैंसर के ऊपर था, और आप लोगों ने लोगों को ये बताना जरूरी उसमें समझा, और आपने बखूबी उसमें बताया कि कैंसर की लड़ाई के लिए हमें पीछे कभी रहना नहीं चाहिए और आखिरी दम तक हमें उसके साथ लड़ना चाहिए। हमने एक व्यस्त थिएटर ग्रुप के ओर से एक नुक्कड़ नाटक अम्बाला में किया था, जिसमें हमने कैंसर के लिए लोगों को जागरूक किया था। तो वो फिल्म हमें बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने आपको उसमें सराहा भी। तो ये आपका जो सोचना है कि शाबाशी देता हूं, आपने ये सोचा कि अगर हमने एक व्यक्ति तक पहुंचना है तो फिल्म के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। अब आप एक फिल्म्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इस नाम से अब आपको जाना जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा और श्रोताओं को भी हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है।
0: सर, जो द एके फिल्म प्रोडक्शन है, ये बेसिकली मैंने इसलिए खोला कि ताकि कुछ जिनको नीड है, जो इसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं हम शूट करते हैं हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने ये फर्म को रजिस्टर करवाया। तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं, सारी फिल्में मैं इस पे डाल देता हूँ, फ्री है, कोई मैं कहीं बेचता भी नहीं हूँ। मैं अभी जैसे फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड होती है, उसके ऊपर बनाया था, जैसे आपने बताया कैंसर के ऊपर बनाया, एक बायोपिक गो रवि गो बनाया, जिसमें सारी जो डबिंग हुई है यहाँ पे भी हुई है, आपने एक कीमती वक्त दिया था हमें। इसी तरह एडिक्शन पे हमने काम करा हुआ है, नशे के ऊपर काम करा, रोड सेफ्टी, इसी तरह बहुत सारी है। मैं जो सुनने वाले हैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप फिल्मों को एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो देखते हो, साथ में जो उसका मैसेज होता है उसको जरूर देखें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। सर, जो आपने सवाल पूछा कि आने वाला मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, मैं सुनने वाले दर्शक को बताना चाहूंगा कि जो टाइटल है वो एडिक्शन है। जी हाँ, एडिक्शन आपके दिमाग में आ गया होगा, नशा, लेकिन एडिक्शन नशा ही नहीं, आज एक एक जो सबसे बड़ी समस्या जो बनी है वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, मैं मोबाइल फोन के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जिसे लिख चुका हूँ मैं, सभी को बहुत अच्छी लगी है, मैं इस पर जल्द काम करने वाला हूँ, और करेक्टर भी सर्च कर रहा हूँ, जिसमें गुरु जी को इंस्पेक्टर का रोल मैं दे रहा हूँ, अहम रोल, क्योंकि इंस्पेक्टर को गलत नजरिया से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो अच्छा, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल फोन है वो बड़े तो चलो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम होता है, वो लगा तो लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उसका वो मिस यूज कर रहे हैं, वो किस तरह उससे एडिक्ट होते हैं, ये छोटी सी स्टोरी है। तो मैं चाहूंगा कि जब बन जाएगी तो हमारे गुरुजी उसके बारे में बताएंगे, तो आप सर सभी उसे जरूर देखें।
1: आपने सही कहा कि कोई भी सुविधा हमें मिलती है उसका सदुपयोग भी किया जाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है, और मोबाइल खास करके इस समय हम सबके लिए एक परेशानी का बाइस बना है। इवन जो बड़े लोग हैं, अगर घर में कोई बात सीरियस चल रही होती है और बीच में मैसेज का टोन बजता है तो हम मोबाइल उठा के देखते हैं कि वो मैसेज किसका है, तो जो सीरियस बात चल रही होती है उसमें भी विघ्न पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बहुत अच्छी बात है।

0: हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये सबको छुए और ये सबको एक मैसेज अच्छी तरह से दे पाए। हम मोबाइल को जरूर यूज करें पर एक लिमिट तक यूज करें, ताकि ये हमारे लिए कल को कोई परेशानी का बायस ना बने। अनिल जी एक्टर है, राइटर है, एडिटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और क्या ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है जो अभी करना बाकी है?
1: एक सपना है सर, वो रह गया।
0: जी बताइए उस सपने के बारे में। और
1: थोड़ा गला खराब हो गया है, कोई सुनने नहीं। वालों के लिए माफी चाहूंगा। मेरा सपना सर ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूं जहां बच्चे सीखना चाहते हैं, जिन पे पैसे नहीं हैं
0: जी,
1: बस वो शिद्दत के साथ वो सीखें, जैसे फिल्म बनाना
0: जी।
1: और वैसे मैं कहूं कि मैं मुंबई को अंबाला में लाना चाहता हूं, ये मेरा एक सपना है सर।
0: बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना जरूर चाहूंगा कि मुंबई जाने के बजाय अगर हम घर बैठ के ये काम करें तो सबसे अच्छा है। उदाहरण के तौर पर हमने 2 साल पहले अंबाला में ही एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना जिसमें हम लोगों ने काम किया, और वो अंबाला में ही शूट हुआ और पूरे हमारे देश में वो दूरदर्शन नेशनल पर 2 बार आज तक टेलीकास्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं, बट अगर हम मुंबई जाते भी हैं तो मेरी राय ये है कि अच्छी तरह से तैयार होके अगला कदम मुंबई के लिए आप उठाएं, और कल को ऐसा ना हो कि मुंबई जाके आपको अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो पीछे मुड़ के आना आपके लिए मुश्किल हो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और एक पर्सनल सवाल अनिल जी से, काम और परिवार का संतुलन आप कैसे बनाते हैं?
1: सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट अगर आपको सपने सच करने हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को हम कहीं ना कहीं उनको मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब कि हम उनसे सलाह लेते हैं कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है, आप हमारा साथ उसमें दो। तो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे ब्रदर है, मेरी मदर है, ये हमेशा मेरा साथ देते हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ तो ये सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छा मुकाम हासिल करना है।
0: ये आपने एकदम सही कहा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जब तक परिवार का साथ ना हो तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं।
1: सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सुनने वाले जो श्रोता हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि BTG जो ग्रुप थिएटर ग्रुप है, मैं इसके साथ आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा, और साथ में जो वितस्ता जो रेडियो है FM, मैं इसके साथ भी जुड़ा हूँ और मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा, और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं सर से डिस्कस भी करता रहता हूँ और मुझे अच्छे गाइड भी करते हैं सर।
0: अनिल जी आपका ये आपका बड़प्पन है कि आप जब भी कोई काम करते हैं और उसमें अगर आप राय लेते हैं, हमें राय तो ज़रूर सबसे लेनी चाहिए पर करना वही होता है कि जो हमारे मन में है, पर उस राय लेने से कुछ न कुछ रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है। रेडियो वितस्ता और वह थिएटर ग्रुप हमेशा द AK फिल्म्स के साथ है, और मुझे याद है आपने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आपने उसकी शुरुआत मेरे जीवन के ऊपर आपने इंटरव्यू किया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप आए और मैं भी अपने जीवन के बारे में और जो मेरी जीवन यात्रा थी उसके बारे में कह सका। इस प्रोग्राम का अब समय समाप्त होने जा रहा है। अंत में मैं अनिल जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप FM 90.0 MHz के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: मैं अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले और जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं और जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपने सुनने वालों को मैसेज क्या, मैं एक राय, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। कभी भी कोई भी काम करना हो उसके बारे में अच्छे से सोच लो। अगर वो काम नहीं होता है तो कभी भी उदास नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, उस पे और मेहनत करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जितनी बार आप हारोगे उतनी बार आप सीखोगे। सीखने से बंदा आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे अगर आपको कोई ढकेलता है आप उसे हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे रेडियो वितस्ता का एक पंच लाइन है, हम सफ़र जिंदगी का, इसी तरह आपकी जो जिंदगी है उसको हंसी खुशी हंसते गाते गुजारते रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, आप आज आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें कही, और मुझे आशा है कि अम्बाला के सभी लोगों तक हम ये बात जब रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से पहुंचाएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि अम्बाला के जितने भी लोग हैं वो एक एक करके हम उनको यहाँ स्टूडियो में बुलाएंगे, उनकी हम बात रिकॉर्ड करेंगे और सभी अम्बाला वासियों तक उस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अम्बाला कैंट का पहला FM स्टेशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल जी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार यादव, रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आपसे बातचीत होगी इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बारे में।
2: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
3: शुक्रिया
2: डॉक्टर साहब। बात करेंगे हम टीकाकरण के बारे में, जिसे आप इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। ये टीकाकरण क्या है?
3: ये इम्यूनाइजेशन जो है, हमारे ना स्वास्थ्य केंद्र जो है जितने भी हैं वहाँ पर इम्यूनाइजेशन होता है। कुछ बीमारियाँ हैं, 6 वैक्सीन किलर डिजीज़ हैं जिनसे कि ना मौत भी हो सकती है, जैसे तपदिक की बीमारी, टीवी जिसको बोलते हैं, इसी तरह डिफ्थेरिया की बीमारी है जिसको हम गलघोंटू बुखार बोलते हैं, काली खांसी की बीमारी है, तो इन चांदनी की बीमारी है तो जिनसे मौत तक हो सकती है, इसी तरह खसरे की बीमारी है। इन सब बीमारियों के खिलाफ जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है टीकाकरण लगाया था जिससे कि ये बीमारियां रोकी जाती हैं।
2: आम भाषा में इसे हम इंजेक्शन कहते हैं।
3: इंजेक्शन कहते हैं
2: जी।
3: इम्यूनाइजेशन से हम इनकी बेसिकली हम इम्यूनिटी जो है रेज करते हैं ताकि हमारा शरीर जो है इन बीमारियों का मुकाबला कर सके।
2: जी।
3: तो इस बीमारियों की रोकथाम के लिए ये टीके लगवाए जाते हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये टीके फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लगाए जाते हैं।
2: अच्छा, ये जो टीके होते हैं जैसे BCG, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी या DPT, इस तरह के टीके कब कब लगवाए जाते हैं?
3: ये BCG अगर इंजेक्शन जो है वो जो अगर तो डिलीवरी जो है बच्चा शिशु जो है वो हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसी दिन लगा देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कहीं बाहर होता है, घर में होता है, तो वो पहले महीने में ही लगा लेना चाहिए, सबसे अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर लगवा लेना चाहिए ना। तो दूसरा जो है
2: ये जो BCG का टीका है ये किस तरह का फ़ायदा देता है?
3: BCG का टीका जो है वो तपदिक की बीमारी के खिलाफ लगाया जाता है, इससे तपदिक की बीमारी की रोकथाम होती है, टीबी की बीमारी जो है वो नहीं होती,
2: यानी ट्यूबरकुलोसिस
3: को रोकने के लिए होता है।
2: तो ये आपने कहा कि जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त
3: लगवा लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि घर में या कहीं आपके रिश्तेदारी में किसी आदमी को अगर टीबी की बीमारी होगी तो अगर वो बच्चा उसके कंटेक्ट में आता है तो उसको बीमारी होने का डर होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह अच्छा है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इसके बारे में बहुत सुना है।
3: हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो है अब हमारे स्वास्थ्य केंद्र ने ये भी इंक्लूड किया, क्योंकि पहले हम 6 बीमारियों के खिलाफ लगाते थे, अब ये 7वीं बीमारी जो है जिसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, इसके खिलाफ भी ये इंजेक्शन अब हेपेटाइटिस बी का अस्पतालों में लगाया।
2: किस तरह का वायरल होता है एक इंसान में कि ये जरूरी लगवाना पड़ता है हेपेटाइटिस ए? ये बच्चे को ही लगवाना पड़ता है?
3: बच्चे को ही लगवाना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर ये ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है
2: जी।
3: तो इसलिए बच्चों को लगवाना ज्यादा अच्छा है।
2: अगर तो पहले किसी ने नहीं लगवाया हो तो ये किसी भी वक्त लगवाया जा सकता है?
3: हाँ, इस तरह तो किसी वक्त लगवाया जा सकता है, पर आमतौर पर हम जो है वो अपने टीकाकरण में जो है बच्चों को ही लगा रहे हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस बी के जो इंजेक्शन है वो हमारे सभी हॉस्पिटलों में अब उपलब्ध है
2: जी।
3: तो ये 3 डोजें इसकी लगवाते हैं, एक तो सपोज करो आज की डेट में अगर बच्चे को हम आज एक इंजेक्शन दे देते हैं, उसके बाद महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो फिर पहले इंजेक्शन के 6 महीने बाद या दूसरे इंजेक्शन के 5 महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन, जिन 6 महीने में तीनों डोजे कम्प्लीट करते हैं।
2: ये आपने कहा कि 5 साल के जो बच्चे,
3: 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको ज्यादा अच्छा है ना।
2: अच्छा, एक DPT होता है, ये वैक्सीन है?
3: हाँ, DPT भी जो है वो वैक्सीन ही है, जो 3 बीमारियों के खिलाफ होता है, एक डिफ्थेरिया होता है, गलघोंटू बुखार हम उसको बोलते हैं, तो इस बुखार के लक्षण होते हैं जैसे गले में सूजन आ जाती है, गले के अंदर जो टॉन्सिल हैं उसके ऊपर एक सफेद जैसा कवर बन जाता है, गला खोलने में मुश्किल हो जाती है, पानी तक निकलना मुश्किल हो जाता है बच्चे को, तो बुखार बड़ा ज्यादा हो जाता है। तो दूसरी जो बीमारी होती है इसमें आती है पर्टूसिस, जिसको हम काली खांसी कहते हैं
2: जी।
3: तो उसमें भी बड़ी जोर की खांसी होती है, बीच में बच्चा ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब खांसी होती है वो अटैक की शक्ल में होती है, तो बच्चा नीला पड़ जाता है, इतना खांसी जोर से होती है
2: जी।
3: तो तीसरी बीमारी जो है इसमें टेटनस है, चांदनी, जिसमें जिस्म गर्दन वगैरह अकड़ जाती है, तो ये तीनों बीमारियों के खिलाफ जो है एक इकट्ठा इंजेक्शन लगाया जाता है।
2: ये कब लगवाना चाहिए?
3: इसकी 3 डोजें पहले लगाई जाती हैं, पहली डोज जो है वो छः हफ्ते पर या डेढ़ महीने का जब बच्चा होता है उस वक्त लगाई जाती है। दूसरा जो है डोज जो है एक महीने के बाद, यानी कि ढाई महीने पर। तीसरी डोज जो है उसके एक महीने बाद, साढ़े तीन महीने पर। तीन डोजें लगाने के बाद फिर बूस्टर डोज लगाई जाती है 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब इन वैक्सीन की बात होती है तो कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में ही इनको लगवाना चाहिए।
3: हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जो है जो कोल्ड चेन सिस्टम जो है मेंटेन रखा गया, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन हैं उसमें 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर पर इनको रखना होता है। अगर 8 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब भी वैक्सीन ख़राब हो जाती है, अगर 2 डिग्री से नीचे जाता है तब भी कुछ वैक्सीन जो है ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में चूँकि हमारे पास फ्रिज होते हैं, ILR वगैरह रेफ्रिजरेटर रखे हैं, और हमने वो टेम्परेचर रेगुलेट करके रखी होती है 2 के और 8 के बीच के रखे, क्योंकि हम सुबह भी आके जो है वो रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर 2 से ऊपर तो नीचे तो नहीं चली गई है, जब 8 से ऊपर तो नहीं गई है, तो शाम को फिर 4 बजे जब जाते हैं दोबारा उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई हॉस्पिटल में ही लगवानी चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आपकी पसंद का कोई गीत, क्योंकि गीत संगीत की गुंजाइश हमारे इसका,
3: रफी साहब का कोई सुना दीजिए, तेरे मेरे सपने जब।
2: अच्छा, गाइड फिल्म से गीत सुना चाहेंगे।

0: डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, कार्यक्रम का शीर्षक है स्वास्थ्य चर्चा। डॉक्टर साहब, जब हम मीजल्स की बात करें, इसके लिए इंजेक्शन वगैरह लगवाए जाते हैं ताकि ये मीजल्स दूर हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंटी मीजल्स का इंजेक्शन लगवाने के बावजूद भी बच्चे में मीजल्स निकल आते हैं, फिर माँ बाप घबराते हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: मीजल जो है खसरा की बीमारी है, जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं, तो इसमें जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं, मीजल वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है ना, उसके बाद भी कई बार देखा गया है कि जो है खसरा की बीमारी दोबारा हो जाती है। लेकिन अगर इंजेक्शन लगवाया होगा, जब जब देखा गया तो उसमें देखा गया है, जब इंजेक्शन लगाने के बाद ये अटेन्यूएटेड फार्म में होती, थोड़ी इतनी जोर की नहीं होती है कि बच्चे की मौत हो जाए। जैसे इस तरह अगर किसी को मीजल होगी तो उसमें काफ़ी बार डेथ्स हो जाती हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को इंजेक्शन लगा हुआ उसके बाद अगर मीजल होगी तो वो इतनी खतरनाक नहीं होगी, वो ना उसको कम नुकसान पहुँचाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बुखार होगा जब वो होगा तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उससे
0: अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप घबराते हैं।
1: माँ बाप घबरा जाते हैं, बुखार वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए उनको मीजल के लिए मेन जो है बुखार का दवाई देनी होती है उसके लिए, बाकी तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा बुखार बढ़ जाए तो गीला कपड़ा वगैरह माँ बाप उसके माथे पर रख सकते हैं ताकि बुखार कंट्रोल में रहे,
0: यानी
1: घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह जो मीजल होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, जो इंजेक्शन लगवाने के बाद होती है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी इंजेक्शन जब लगवाया जाता है तो एलर्जी होती है, ये भी हमारे काफ़ी लोग कहते हैं कि साहब मुझे इंजेक्शन लगवाने से एलर्जी होती है, ऐसा क्यों होता है?
1: मोस्टली जो वैक्सीन जो होती हैं, जो है हार्मोन इधर से निकाली गई होती हैं, तो इसमें कई बार एलर्जी हो जाती है, क्योंकि फॉरेन बॉडी है, तो हम बेसिकली फॉरेन बॉडी लगाते हैं ताकि जिस्म में हमारी जो इम्यूनिटी है उसको रेज करें। जो इम्यूनाइजेशन जो है बेसिकली द कंसेप्ट ही यही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को रेज करना है।
0: जी जी।
1: तो कोई भी फॉरेन बॉडी लगाएं तो किसी एक को ना, कोई 10,000 में या 20,000 में किसी एक बच्चे को एलर्जी हो सकती है।
0: जी जी। यानी इस तरह की बात
1: बहुत कम होती है,
0: अच्छा इंजेक्शन लगवाने से फीवर भी,
1: फीवर तो हाँ काफ़ी बच्चों को हो जाता है, क्योंकि थोड़ी टेम्परेचर जो है रेज हो जाती है, तो कई माँ बाप घबरा जाते हैं कि यहाँ बच्चे को फीवर हो गया, तो लेकिन हम तकरीबन समझाया होता है, कई बार हमारा सेशन में रश बड़ा होता है तो हम माँ बाप को समझा नहीं सकते कि यहाँ पे अगर बच्चे को फीवर हो गया तो घबराना नहीं, तो उसके लिए हमने उनको एक टेबलेट दी होती है भाई, इस टेबलेट का बच्चे की उम्र के हिसाब से भी चौथा हिस्सा ज़्यादा टेबलेट आप खिला देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
0: अब अपने श्रोताओं को हम दोबारा यही आपके ज़रिए कहलवाना चाहते हैं कि BCG का जो इंजेक्शन है, ये आपने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त लगवाना चाहिए।
1: हाँ,
0: अगर चूक गए, हम नहीं लगवा पाए या इस तरह की फैसिलिटी कहीं पे नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा?
1: तब भी एक साल के अंदर अंदर तो लगवा सकते हैं किसी वक्त के ना, जब आज बच्चा पैदा होगा तो एक साल के अंदर किसी भी वक्त लगवा सकते हैं उस इंजेक्शन को।
0: जी, यानी एक साल के
1: जैसे अंदर, आप अगर उस वक्त चूक गए तो फिर आपने पोलियो का ड्राफ्ट डलवाने जाना है या DPT का इंजेक्शन लगवाने जाना है 1.5 महीने के बाद, तो 1.5 महीने के टाइम पर जब जाते हैं तो हम खुद वो BCG का भी टीका लगवा देते हैं, क्योंकि BCG टीके तो आराम होता है, हमें पता लग जाता है इसको लगाया या नहीं है, क्योंकि BCG टीके का जो है स्कार बनता है वो लेफ्ट बाजू पर हम लगाते हैं, लेफ्ट शोल्डर पर, तो हम चेक कर लेते हैं कि इस बच्चे को BCG का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि बाकी इंजेक्शन का कई बार पता नहीं लगता है।
0: वो जो निशान होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि हमें पता चले कि ये इंजेक्शन
1: लगा है। इसलिए हम लेफ्ट बाजू इसलिए चूज किया होता है कि ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कि हम चेक करें सिर्फ लेफ्ट बाजू ही, तो पता लग जाता है कि इसको इंजेक्शन लगाया या नहीं लगा। तो अगर नहीं लगा होगा तो जब 1.5 महीने के बाद बच्चा DPT के लिए हमारे पास आएगा इंजेक्शन लगाने के, तो उस वक्त हम BCG का भी साथ ही लगा देते हैं।
0: डॉक्टर वीरेंद्र साहब, हम यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेंगे, आपकी पसंद का कोई गीत
1: लता जी की आवाज़ में,
0: कोई भी गीत।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से की गई बातचीत सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा?

चलेगा काफिला यारों का साथ, सजेंगे शिकारे दुल्हन से, लहराती झीलों की बुझेगी प्यास, गूंजेगी लोरियां गलियों में, फिर बच्चों की किलकारियां बांधेगी समा, फिर लिखी जाएगी एक नई कलम से कश्मीर की तकदीर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज 14 सितंबर कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस और बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। इस दिन को कभी भी मनाया नहीं जा सकता, इस दिन को केवल याद किया जा सकता है ताकि हर एक देशवासी को वो दर्द, वो पीड़ा, उसके बारे में बताया जाए। और मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और ये दर्द और ये पीड़ा हमारे मन में हमेशा रही है, रहेगी और अंतिम सांस तक रहेगी। पर एक निश्चय है कि मैं अपने समुदाय का जो दुख दर्द है उसकी एक आवाज बनूंगा, पूरे भारत वर्ष तक इस दर्द और इस पीड़ा को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरा सहयोग हमारे आदरणीय गुरुजी रमेश मरहटा जी भी देंगे। उनकी आवाज में भी वो दर्द की बात, वो पीड़ा की बात आप जरूर सुनेंगे इस आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत पीड़ा और स्मरण का दिन है। 14 सितंबर को हम कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस और बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। ये वही दिन है जब कश्मीर की घाटी में शांति और भाईचारा की जड़ों को हिलाकर रख दिया गया था, जब आतंक और हिंसा की आग में हमारी सभ्यता, संस्कृति और असंख्य मासूम जिंदगियां झुलस गई। सन 1989-90 से जो दौर शुरू हुआ वो केवल हिंसा का दौर नहीं था बल्कि एक समुदाय के अस्तित्व पर हमला था। कश्मीरी पंडितों को उनकी अपनी जन्मभूमि, अपने गांव घर, अपने मंदिरों और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से उखाड़ फेंका गया। यह एक ऐसा अध्याय है जिससे भारतीय इतिहास कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस रात की जब लाउडस्पीकरों से धमकियां दी जा रही थी, या तो इस्लाम कबूल करो या घाटी छोड़ दो या फिर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी में अगर कहेंगे तो ये था रल्यू, सल्यू या गल्यू। ये केवल शब्द नहीं थे बल्कि भाई और आतंक के तीर थे जिन्होंने हजारों परिवारों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। कोई अपना खेत खलिहान छोड़ आया, कोई अपनी किताबें और कोई तालीम छोड़ आया, तो कई मां बाप की यादों से जुड़ा वो आंगन। बच्चे स्कूल की किताबें वहीं छोड़ गए, बहनों की शादियों के सपने वहीं अधूरे रह गए और माओं की गोदी में दूध पीते बच्चे बेघर होकर अनजान राहों पर निकल पड़े। ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। दुखद ये है कि आजाद भारत में, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। हमारे माता पिता ये सोच के और ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि हम घर कब जाएंगे, क्या हमें अंतिम सांस अपनी जन्मभूमि पर लेने का अधिकार नहीं है। आज 36 साल हो चुके हैं इस दर्दनाक पलायन को, 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित हैं। जम्मू के टेंट कॉलोनियों से लेकर दिल्ली, मुंबई और देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए कश्मीरी पंडित आज भी घर वापसी का सपना देख रहे हैं। उनकी पीड़ा केवल घर छूटने की नहीं है बल्कि उस पहचान के खो जाने की है जो उन्हें कश्मीरियत की आत्मा का हिस्सा बनाती थी। सोचिए, एक बच्चा जो 1990 में 3 साल का था वो आज 39 साल का है। उसने कभी अपने पैतृक गांव को नहीं देखा, उसका कश्मीर केवल उसके माता पिता की कहानियों में है। ये दर्द सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का है। आइए आपको सुनाते हैं आदरणीय रमेश मरहटा जी की आवाज में ये दर्द और पीड़ा का एक वॉइस नोट।

मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरा इतिहास 5000 साल पुराना है। ये इतिहास मैंने वेदस्ता के किनारे पे लिखा है। यह धरती मेरे पूर्वजों की है। यह मेरी संस्कृति की पहचान है। मेरी पैदाइश इसी धरती पे हुई है। सूफी संतों की यह धरती, कश्यप ऋषि, ललेश्वरी, अभिनव गुप्त, मेरा भारत, मेरे भारत का ताज, मेरा अधिकार, मेरा कश्मीर, मेरी आन भान और शान। मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ही है। मेरे इस कश्मीर को किसकी नजर लग गई? मैं पिछले लगभग 4 दशकों से अपने ही वतन में जला वतनी की जिंदगी झेल रहा हूं। मुझे अपने घर, अपनी जमीन से क्यों अलग किया गया? क्यों अलग किया गया? मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही, मैं देशभक्त हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के षड्यंत्र से सन 1990 को मुझे कश्मीर से निकाला गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला हूं।

14 सितंबर 1989 का वो भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने अभी भी जिंदा है, जब कश्मीरी पंडितों के एक रहनुमा टिकला टिपलो को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी दिन दहाड़े सरी बाजार। ये खबर पूरे कश्मीर में जंगल के आग की तरह फैल गई। कश्मीरी पंडित समाज दहशत में आ गया। यह एक इशारा था दहशतगर्दों की तरफ से, एक चेतावनी थी। अचानक एक नारा पैदा हुआ, रिलू सेलू या गिलू, मिलो या भागो या मरो। कत्लो गारत का यह सिलसिला थमा नहीं, रुका नहीं। पंडित नीलकंठ गंजू, लसकौल, गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट, पंडित प्रेमनाथ भट्ट, सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके पुत्र, इनके अलावा सैकड़ों कश्मीरी पंडित सामूहिक कत्लोकारत, जैसे वंधामा, चिट्टी सिंह पुरा, नाडी मरक, इस तरह के कई वाकात पेश आए और नतीजा हुआ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा 1990

बहुत सही और स्पष्ट कहा आपने गुरुजी। आइए आगे कुछ और बात करते हैं आपसे। कश्मीरी पंडित केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता के वाहक रहे हैं। शारदा पीठ से लेकर नीलमत पुराण तक, संस्कृत विद्या से लेकर संगीत और कला तक, उन्होंने कश्मीर को विश्व

ये सबसे बड़ा दुख है कि 36 वर्षों के बाद भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। कई सरकारें आई और गई, घोषणाएं हुई, पैकेज आए, वादे किए गए, लेकिन आज भी अधिकांश परिवार विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। पुनर्वास केवल घर बनाकर देने से नहीं होगा। असली पुनर्वास तभी होगा जब कश्मीरी पंडित अपनी जमीन, अपनी जड़ों और अपने सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के साथ फिर से कश्मीर घाटी में सुरक्षित रह सकेंगे। आज 14 सितंबर को जब हम इस बलिदान दिवस पर अपने शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि इस दर्दनाक इतिहास को कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास को भूलना अन्याय को वैध ठहराने जैसा है। कश्मीरी पंडितों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आतंक और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। सच्चा भारत वो है जहां हर समुदाय, हर धर्म, हर संस्कृति को सम्मान और सुरक्षा मिले। एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विस्थापित भाई बहनों की आवाज बने, जैसे कि हर समय मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये दर्द, ये मेरा है और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं वो हमारे इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को पहचान ले, उनकी पीड़ा को महसूस करें और उनके पुनर्वास की राह में खड़े अवरोधों को दूर करने में योगदान दें, क्योंकि यह केवल कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, आज जब हम इस बलिदान दिवस पर अपने पूर्वजों और शहीदों को नमन कर रहे हैं, तो आइए सब मिलकर और टीम रेडियो विथस्ता की ओर से और वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से मिलकर प्रार्थना करें कि वो दिन जल्द आए जब कश्मीरी पंडित अपने घर आंगन, अपने मंदिरों, अपनी वादियों में वापस लौट सके। आज 36 वर्षों के बाद भी उनकी आंखों में एक ही सपना है, हमारा कश्मीर, हमारी जड़ें, हमारी मिट्टी। बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, ये केवल एक समुदाय की समस्या नहीं है, ये हम सब भारतवासियों की समस्या है। मैं भारत सोपोरी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता से कश्मीर के उन तमाम आत्माओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के बलिदान दिवस पर। विशेष आभार रमेश मरहट्टा, अशोक पंडित, अनुपम खेर और श्रीमती निर्जा पंडित का। वॉइस ओवर और निर्देशन भारत सोपुरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार

सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ। ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तू लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

चलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था।

अम्बाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिनी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
4: नहीं, कभी नहीं।
3: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
4: अयो नको नको नको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
3: राम, यहाँ। कुछ पियोगे?
4: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
3: नहीं, सोमरस।
4: सोमरस क्या होता माना? अरे अरे, दारू की बात कर रही था। किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
3: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
4: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: Somros kakalar to Coca Cola ki desa. Maharaj,
1: bolo.
0: एक बात याद आ गई महाराज मेरे।
1: पूछो।
0: वो हमारे नीचे ये पीने के लिए कहीं परमिट है कहीं परमिट नहीं है, यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो।
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
1: बोलो।
0: इधर आओ, मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ। अच्छा।
0: एक पोटी थी।
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
1: अच्छा।
0: उसका नाम था चुनिया।
1: सुनिया।
0: हाँ, आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
1: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
2: चुनिया। अरे किधर है रे?

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विस्तार के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना जिसे न आप बदल सकती हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012, राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में अंतिम

मेहता का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गए। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थीं और खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आर डी बर्मन और गुलकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर डी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना की

सभी के कहने पर राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी।

दोस्तों आपको याद होगा, राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपने पराये और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आए और यह सिलसिला 2008 में सीरियल भाभी मां तक

0: राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था, ऊपर आका नीचे काका।
1: हमारे बाद नहीं किताबें उस

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले। 2002 में क्या दिल ने कहा और सबसे अंत में वफा सिनेमा घरों में आई।

0: कभी ये रुलाए।
1: दोस्तों, राजेश खन्ना के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और मासूमियत झलकती थी। राजेश आखिरी सांस तक खूब जिया और जी भर के जिया। उन्हें बेहतरीन और लजीज खाना पसंद था और कभी कभी किचन में जाके खुद खाना बनाते थे। मेहमान नवाजी सीखे तो राजेश खन्ना से। जज्बाती थे, छोटी छोटी बातों को दिल से लेते थे, किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, इसलिए तो कहते थे I hate tears।

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे, जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का खिताब हासिल किया और सन 1966-91 के दौरान 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली खिताब

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय शिव।

दिन आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

संगीतकार प्यारेलाल राजेश खन्ना के साथ काम करने को लकी मानते थे। सन 1969 में फिल्म दो रास्ते और सन 1986 में फिल्म अमृत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आम तौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंचे कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब, आदाब।
2: आदाब भैया, आदाब।
1: आज का प्रोग्राम समर्पित है राजेश खन्ना के नाम। राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं चाहता था बहुत कि वहाँ स्मशान घाट पहुँचूं, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मेरा बेटा गया मेरी तरफ से वहाँ, लेकिन अफसोस कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं क्या अर्ज करूं। और मतलब ये इससे पता चलता है कि राजेश खन्ना की यादें और उनकी उनका प्रेम अब तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की।
1: जी।
2: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है
1: जी,
2: वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद

0: पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई। और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिंपल काम करेंगी फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगी, क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, दो बेटियां भी पैदा हुई। मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी
1: जी।
0: और वही बात हुई जो कि बॉबी के गीत में बॉबी की हीरोइन डिंपल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चले चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो।
1: जी।
0: और वो चली गई महके, और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक ये दोनों अलग रहे। और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिंपल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहां से लाने में उनका और उनके दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था।
1: जी।
0: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीर साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
0: या तो फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा, या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए, मसलन आर डी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर कुमार
0: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार
0: भी
1: जी, जी, जी।
0: तो इन सब से मिलना और उनके उनसे बात करना राजेश की, ये होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए। और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुंवारी लड़कियों की तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी ये हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जब उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी, दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे, दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
0: नहीं, मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना
1: जी जी,
0: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था, अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को
1: जी जी,
0: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे। उनका चेहरा आपने देखा ही होगा, दाढ़ी तो थी और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना।

0: बहुत बीमार, बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
0: ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये सही सही है कि सब उन्हें काका कहते थे। मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी, क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे तो
1: जी,
0: मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
0: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं। बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बार में आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर कहीं प्यार था आप वहां पर मौजूद हुए इतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसी मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। टन।
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: गर्मी के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

5 जुलाई 2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक

मौत आई राजेश को अपने साथ ले गई। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता, पर यह भी अपनी जगह सही है, आनंद मरते नहीं। पसीना मौत का माथे पे उतरा है, आई न लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे?

चलेगा काफिला यारों का साथ, सजेंगे शिकारे दुल्हन से, लहराती झीलों की बुझेगी प्यास, गूंजेगी लोरियां गलियों में, फिर बच्चों की किलकारियां बांधेगी समा, फिर लिखी जाएगी एक नई कलम से कश्मीर की तकदीर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज 14 सितंबर कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस और बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। इस दिन को कभी भी मनाया नहीं जा सकता, इस दिन को केवल याद किया जा सकता है ताकि हर एक देशवासी को वो दर्द, वो पीड़ा, उसके बारे में बताया जाए। और मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और ये दर्द और ये पीड़ा हमारे मन में हमेशा रही है, रहेगी और अंतिम सांस तक रहेगी। पर एक निश्चय है कि मैं अपने समुदाय का जो दुख दर्द है उसकी एक आवाज बनूंगा, पूरे भारत वर्ष तक इस दर्द और इस पीड़ा को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरा सहयोग हमारे आदरणीय गुरुजी रमेश मरहटा जी भी देंगे। उनकी आवाज में भी वो दर्द की बात, वो पीड़ा की बात आप जरूर सुनेंगे इस आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत पीड़ा और स्मरण का दिन है। 14 सितंबर को हम कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस और बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। ये वही दिन है जब कश्मीर की घाटी में शांति और भाईचारा की जड़ों को हिलाकर रख दिया गया था, जब आतंक और हिंसा की आग में हमारी सभ्यता, संस्कृति और असंख्य मासूम जिंदगियां झुलस गई। सन 1989-90 से जो दौर शुरू हुआ वो केवल हिंसा का दौर नहीं था बल्कि एक समुदाय के अस्तित्व पर हमला था। कश्मीरी पंडितों को उनकी अपनी जन्मभूमि, अपने गांव घर, अपने मंदिरों और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से उखाड़ फेंका गया। यह एक ऐसा अध्याय है जिससे भारतीय इतिहास कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस रात की जब लाउडस्पीकरों से धमकियां दी जा रही थी, या तो इस्लाम कबूल करो या घाटी छोड़ दो या फिर मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी में अगर कहेंगे तो यह था रल्यू, सल्यू या गल्यू। ये केवल शब्द नहीं थे बल्कि भय और आतंक के तीर थे जिन्होंने हजारों परिवारों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। कोई अपना खेत खलिहान छोड़ आया, कोई अपनी किताबें और कोई तालीम छोड़ आया, तो कई मां बाप की यादों से जुड़ा वो आंगन। बच्चे स्कूल की किताबें वहीं छोड़ गए, बहनों की शादियों के सपने वहीं अधूरे रह गए और माओं की गोदी में दूध पीते बच्चे बेघर होकर अनजान राहों पर निकल पड़े। ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन था। दुखद ये है कि आजाद भारत में, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। हमारे माता पिता ये सोच के और ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि हम घर कब जाएंगे, क्या हमें अंतिम सांस अपनी जन्मभूमि पर लेने का अधिकार नहीं है। आज 36 साल हो चुके हैं इस दर्दनाक पलायन को, 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित हैं। जम्मू के टेंट कॉलोनियों से लेकर दिल्ली, मुंबई और देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए कश्मीरी पंडित आज भी घर वापसी का सपना देख रहे हैं। उनकी पीड़ा केवल घर छूटने की नहीं है बल्कि उस पहचान के खो जाने की है जो उन्हें कश्मीरियत की आत्मा का हिस्सा बनाती थी। सोचिए, एक बच्चा जो 1990 में 3 साल का था वो आज 39 साल का है। उसने कभी अपने पैतृक गांव को नहीं देखा, उसका कश्मीर केवल उसके माता पिता की कहानियों में है। यह दर्द सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का है। आइए आपको सुनाते हैं आदरणीय रमेश मरहटा जी की आवाज में ये दर्द और पीड़ा का एक वॉइस नोट।

मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरा इतिहास 5000 साल पुराना है। ये इतिहास मैंने वेदस्ता के किनारे पे लिखा है। ये धरती मेरे पूर्वजों की है। ये मेरी संस्कृति की पहचान है। मेरी पैदाइश इसी धरती पे हुई है। सूफी संतों की ये धरती, कश्यप ऋषि, ललेश्वरी, अभिनव गुप्त, मेरा भारत, मेरे भारत का ताज, मेरा अधिकार, मेरा कश्मीर, मेरी आन भान और शान। मैं कश्मीरी पंडित हूं। मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से ही है। मेरे इस कश्मीर को किसकी नजर लग गई? मैं पिछले लगभग 4 दशकों से अपने ही वतन में जलावतनी की जिंदगी झेल रहा हूं। मुझे अपने घर, अपनी जमीन से क्यों अलग किया गया? क्यों अलग किया गया? मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही, मैं देशभक्त हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के षड्यंत्र से सन 1990 को मुझे कश्मीर से निकाला गया। मैं अपनी मर्जी से नहीं निकला हूं।

14 सितंबर 1989 का वो भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने अभी भी जिंदा है, जब कश्मीरी पंडितों के एक रहनुमा टिकलाव टिपलो को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी दिन दहाड़े सरी बाजार। ये खबर पूरे कश्मीर में जंगल के आग की तरह फैल गई। कश्मीरी पंडित समाज दहशत में आ गया। यह एक इशारा था दहशतगर्दों की तरफ से, एक चेतावनी थी। अचानक एक नारा पैदा हुआ, रिलो सेलो या गिलो, मिलो या भागो या मरो। कत्लो गारत का यह सिलसिला थमा नहीं, रुका नहीं। पंडित नीलकंठ गंजू, लस्सा कौल, गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट, पंडित प्रेमनाथ भट्ट, सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके पुत्र, इनके अलावा सैकड़ों कश्मीरी पंडित सामूहिक कत्लो गारत, जैसे वंधामा, चिट्टी सिंह पुरा, नाडी मरक, इस तरह के कई वाकात पेश आए और नतीजा हुआ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा 1990

बहुत सही और स्पष्ट कहा आपने गुरुजी। आइए आगे कुछ और बात करते हैं आपसे। कश्मीरी पंडित केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता के वाहक रहे हैं। शारदा पीठ से लेकर नीलमत पुराण तक, संस्कृत विद्या से लेकर संगीत और कला तक, उन्होंने कश्मीर को विश्वभर में गौरव दिलाया। लेकिन 1990 के बाद जब वे घाटी से निकल गए, विस्थापित हो गए, तो उनके साथ कश्मीर की आत्मा भी घायल हो गई। कितने ही मंदिर तोड़े गए, कितनी ही मूर्तियां अपवित्र की गई और कितनी ही धरोहर खंडहर बनकर रह गए। जो हमारा आशियां था वो भी आज उन 3 सीढ़ियों तक सीमित रह गया जिन सीढ़ियों के द्वारा हम उस महल में अंदर जाते थे। मित्रों, ये सबसे बड़ा दुख है कि 36 वर्षों के बाद भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। कई सरकारें आई और गई, घोषणाएं हुई, पैकेज आए, वादे किए गए, लेकिन आज भी अधिकांश परिवार विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। पुनर्वास केवल घर बनाकर देने से नहीं होगा। असली पुनर्वास तभी होगा जब कश्मीरी पंडित अपनी जमीन, अपनी जड़ों और अपने सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के साथ फिर से कश्मीर घाटी में सुरक्षित रह सकेंगे। आज 14 सितंबर को जब हम इस बलिदान दिवस पर अपने शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि इस दर्दनाक इतिहास को कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास को भूलना अन्याय को वैध ठहराने जैसा है। कश्मीरी पंडितों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आतंक और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। सच्चा भारत वो है जहां हर समुदाय, हर धर्म, हर संस्कृति को सम्मान और सुरक्षा मिले। एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विस्थापित भाई बहनों की आवाज बने, जैसे कि हर समय मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये दर्द, ये मेरा है और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं वो हमारे इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को पहचान ले, उनकी पीड़ा को महसूस करें और उनके पुनर्वास की राह में खड़े अवरोधों को दूर करने में योगदान दें, क्योंकि यह केवल कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, आज जब हम इस बलिदान दिवस पर अपने पूर्वजों और शहीदों को नमन कर रहे हैं, तो आइए सब मिलकर और टीम रेडियो विथस्ता की ओर से और वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से मिलकर प्रार्थना करें कि वो दिन जल्द आए जब कश्मीरी पंडित अपने घर आंगन, अपने मंदिरों, अपनी वादियों में वापस लौट सके। आज 36 वर्षों के बाद भी उनकी आंखों में एक ही सपना है, हमारा कश्मीर, हमारी जड़ें, हमारी मिट्टी। बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, ये केवल एक समुदाय की समस्या नहीं है, यह हम सब भारतवासियों की समस्या है। मैं भारत सोपोरी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता से कश्मीर के उन तमाम आत्माओं को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के बलिदान दिवस पर। विशेष आभार रमेश मरहट्टा, अशोक पंडित, अनुपम खेर और श्रीमती निर्जा पंडित का। वॉइस ओवर और निर्देशन भारत सोपुरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

हेलो, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे तक आप बने रहेंगे मेरे साथ और हम यह सफर तय करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। लब पर जो आ जाए तराना अच्छा लगता है, गीत नया हो या हो पुराना अच्छा लगता है। मैं हूं रमेश मराठा, वेलकम।

जब कभी फरामोश किया था, बर्फ की चादर पे चलते चलते, गुजरते गुजरते इन्हीं राहों पे, जहां आज हमारी चाहतों के टुकड़े अब बिखर चुके हैं। जब कभी रिश्तों की अहमियत तुम समझोगे, तब तुम खामोशी से, चुपके से आना और देना मेरी दहलीज पे दस्तक। शायद हम अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करें और जिए अपने अतीत के साथ, संभलते संभलते एक दूसरे को थामते हुए।

चाहतों की तरह तुम अक्सर कहा करती थी, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर काश कभी तुम लौट के आती, अपनी चुप्पी तोड़ लेती, मुझ पे एहसान फरमाती, अपने आगोश की पनाह में मुझे रख लेती, फिर मोहब्बत करती चुपचाप।

हम तो अपना दर्द छिपाए बैठे हैं एक सदी से। मुझको कहां खबर थी कि तुम यूं खफा हो जाओगे और साथ निभाने का अहद भी तोड़ दोगे। तुम सामने होते हो पर हर पल ओझल हो जाते हो शबनमी बूंदों की तरह। क्या तुम्हें मालूम है ढूंढा है मैंने तुमको इस कायनात के जर्रे जर्रे में इन हवाओं में इन वीरानियों में खंडहरों में यहां इन बेनाम बस्तियों में इन पानियों की गहराइयों में। पर मिला बस एक लम्हा तुम्हारी याद का सिर्फ तुम्हारी याद का।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छांव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।
1: जब कभी मेरे आंगन में पेड़ों की इन्हीं शाखों पे लचकती थी चांदनी, जब खुशनुमा मौसम के इन हसी लम्हों में तुम्हारा करीब आना, रुक जाना, उठ जाना, फिर ढल जाना, बिना कुछ कहे दूर जाकर मोहब्बत का इजहार करना।

मुझको अब न आरजू कोई न है कोई तमन्ना, बस तुम यू ही मेरे ख्वाबों में आते रहो। यही एक हसरत लिए बरसों से भटक रहा हूं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे मेल करिए ramesh.marathan@gmail.com। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और छोड़ जाते हैं आपको

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर दिन आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है पूरे 9 बजे। श्रोताओं, आप घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के हमारे इस खूबसूरत सुहाने सफर को यहीं थाम दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये पूरा प्रसारण आपको बेहद पसंद आया होगा, और इसने आपके दिन को और भी खुशनुमा, तरोताजा और यादगार बनाया होगा। आज का दिन बहुत ही अलग अंदाज से हमारे देश में मनाया गया, याद किया गया। आइए शुरुआत करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि आप सभी को संबोधित भी करें हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता से। दोस्तों, आज 14 सितंबर को बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हरतालिका तीज का पावन पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जो माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम का प्रतीक है। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से सभी व्रतधारी महिलाओं को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही आज का दिन हमने बेहद खास और पावन तरीके से मनाया। आज 14 सितंबर 2026 को पूरे देश में और दो बड़े उत्सवों के रंगों में रंगा हुआ है। एक तरफ जहां आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपनी मातृभाषा और राजभाषा हिंदी के गौरव और मिठास का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हमारे घरों और मनों में पधार चुके हैं। रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही एक और संवेदनशील दिन आज के दिन याद किया गया, क्योंकि ऐसा दिन है जिसको मनाया नहीं जा सकता। 14 सितंबर कश्मीरी पंडित बलिदान दिवस। 14 सितंबर का दिन कश्मीरी पंडित समुदाय के इतिहास में अत्यंत दर्दनाक, गंभीर और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह दिन उन कश्मीरी हिंदू शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, जिन्होंने 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में घाटी में भड़के उग्रवाद और आतंकवाद के कारण अपनी जानें गंवाई। 14 सितंबर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह दिन विशेष रूप से पंडित टीकालाल टपलू की शहादत से जुड़ा हुआ है। टीकालाल टपलू एक प्रसिद्ध वकील, समाज सेवक और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे। 14 सितंबर 1999 को श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आतंकवादियों ने दिन दहाड़े उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। टीकालाल टपलू की हत्या कश्मीरी पंडितों के लक्षित नरसंहार यानी टारगेटेड किलिंग्स की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद समुदाय के कई अन्य प्रमुख बुद्धिजीवी, डॉक्टरों, पत्रकार और आम नागरिकों की क्रमबद्ध तरीके से हत्याएं की गई। इस भय और आतंक के माहौल के परिणाम स्वरूप 1990 में लाखों कश्मीरी पंडित, जिनमें मैं और मेरा परिवार भी है, को अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि छोड़कर पलायन और विस्थापन करने पर मजबूर होना पड़ा। कश्मीरी पंडित बलिदान दिवस केवल एक शोक सभा नहीं, बल्कि ये अपनी जड़ों, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि उग्रवाद ने किस तरह एक जीवंत संस्कृति को अपनी जन्मभूमि से दूर किया। कश्मीरी पंडित आज भी इस उम्मीद के साथ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, करते रहेंगे कि एक दिन वे पूरी गरिमा, सुरक्षा और न्याय के साथ अपनी मातृभूमि कश्मीर लौट सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस उपलक्ष्य में कल हमने 7 बजे एक कार्यक्रम प्रसारित करने का सोचा है जिसका नाम है विस्थापन का दर्द। इस कार्यक्रम में मैं, मेरे 3 दोस्त होंगे और हमने उसमें बात की है कि हमने पिछले 36 वर्षों में क्या पाया है। हमने खोने की बात नहीं की क्योंकि जिंदगी आगे की ओर बढ़ती है। तो जरूर सुनिएगा, अगर आपको पसंद हो तो जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम, अपना फीडबैक भी भेजिएगा। जाते जाते आज के इस खूबसूरत सफर को विराम देने से पहले रेडियो वितस्ता की ओर से कुछ पंक्तियां आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां यू हैं, सुरमई सी शाम में सुरों का ये कारवां रुकता है कहां। सुरमई सी शाम में सुरों का ये कारवां रुकता है यहां, जहां बहती है अपनों की मिठास वो वितस्ता का जहां। हिंदी की मिठास और बप्पा के आशीर्वाद से महके आज आपका कल। रेडियो वितस्ता संग मुस्कुराता रहे आपका हर एक पल। रेडियो वितस्ता के संग मुस्कुराता रहे हर एक आपका पल। एक बार फिर पुनः आप सभी को विघ्नहर्ता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने से पहले कल के कार्यक्रमों का विवरण। 15 सितंबर 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर घर परिवार एपिसोड 7। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 40 मक्खन बाज होगा शीर्षक, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 बजे आप सुनेंगे जल शक्ति से प्रसार से स्पॉन्सर्ड एक कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी एपिसोड 3। 10:10 पर काव्य गोष्ठी इंदु शर्मा जी के साथ हमारी बातचीत होगी और उनकी लिखी कविताएं आपको सुनाएंगे। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विस्थापन का दर्द, पेश करेंगे भारत सोपोरी। मेरे साथ होंगी भारत पंडित, रोमेश पंडिता और संजीव रैना। 8:30 बजे सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की ये कार्यक्रम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। दोस्तों अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात नई ऊर्जा, नई गीतों, नई बातों और ढेर सारी खुशियों के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर दिन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।